0: वर्जित करने और स्पष्ट आदेश देने के बाद भी जब उनके अपने ही परिवार के लोगों ने मिलकर मंदिर का धान लूटकर बांटकर खा लिया तो सैनिक वृत्ति वाले कोटपुलियार ने उन्हें उस युग के चलन के अनुसार दंडित कर दिया। आज एक व्यवस्थित शासन प्रणाली है, इसलिए संस्थाओं, मंदिरों तथा अन्य धर्मस्थलों के धन का दुरुपयोग करने वालों के लिए एक उपयुक्त उदाहरण है। इसीलिए कोटपुलियार एक उच्च कोटि के संत या शिव भक्त माने जाते हैं। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: ஓம் சிவாய நம. Shaivam.org இன் அன்பார்ந்த நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிவகீர்த்தனை. தலைப்பு: சிதம்பரம் என்று ஒரு தலம். வழங்குபவர் அரியக்குடி ராமானுஜ ஐயங்கார் அவர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமா.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: प्रमाणो प्रमोष प्रमोषणम प्रमात्रीणम मायया तमसा कृतम। प्रमात्रि का जो स्मरण या अनुभव न हो पाने में मायया तमसावृतम, माया का जो तमांश है उसके द्वारा जिस समय प्रमाता आवृत हो जाता है, ध्यान देना, प्रमाता जब तम से युक्त हुआ हुआ माया या माया का जो तमो अंश है उसके द्वारा वह प्रमाता आवृत हो जाता है, तब व्यक्ति ये कह देते हैं कि प्रमाता का भान नहीं हो रहा है। जैसे मूर्छा में, जैसे सुषुप्ति में या मरण में प्रमाता का भान नहीं होता है। प्रमाता का भान न होने में कारण क्या है? तो बोले माया में जो तमो अंश है उसके द्वारा आवृत होता है, और पदार्थ आवृत्ति हो जाना ये पदार्थ का नाश नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि माया के दो भेद हैं। माया विद्ये प्रभो शक्ति, माया और अविद्या है। माया विद्ये प्रभो शक्ति भानोच्छाया प्रभो प्रभोपमे। विद्या और माया, माया और विद्या, ये दो परमात्मा की शक्ति है। विद्या प्रकाश की तरह है और माया छाया की तरह है, ये देख लो। अब जबकि जो छाया है वो प्रकाश के बिना सिद्ध नहीं होता। जिसको हम छाया कह रहे हैं वह प्रकाश का ही अवांतर स्वरूप है, क्योंकि यदि बिल्कुल प्रकाश न हो तो कहीं किसी की छाया नहीं होती है। छाया है लेकिन प्रकाश का ही है वो छाया। छाया होने पर भी छाया में पदार्थ स्पष्ट नहीं होता है, प्रकाश में पदार्थ स्पष्ट, यानी प्रकाश प्रखर स्पष्ट दिखता है, छाया स्पष्ट नहीं दिखता है, जबकि ये दोनों ही प्रकाश के स्वरूप हैं। इसी तरह माया और विद्या ये परमात्मा की शक्ति है। विद्या प्रखर प्रकाश की तरह है, माया उस प्रकाश के अंतर्गत की छाया की तरह है, और इसीलिए छाया में पदार्थ भान स्पष्ट भान नहीं होता, लेकिन छाया भी प्रकाश का ही अंग है, प्रकाश के द्वारा ही दृष्ट है। छाया प्रकाश नहीं है तो क्या, छाया यदि प्रकाश न होती तो क्या वो दिखता? जो प्रकाश नहीं है वो दिखता नहीं है। और छाया प्रकाश का विरोधी है या प्रकाश छाया का विरोधी है मानेंगे तो फिर छाया दिखेगा नहीं, और प्रकाश होता है तभी छाया होती है, प्रकाश नहीं है तो छाया नहीं है। इसी तरह ये विद्या और माया ये परमात्मा की ही शक्ति है। भानो छाया प्रभो प्रभोपमे, जैसे सूर्य और सूर्य के द्वारा प्रकाश से दिखाई पड़ने वाला छाया, जैसे सूर्य प्रकाश आ गया, पेड़ को उसने प्रकाशित किया, सूर्य के प्रकाश ने पेड़ को प्रकाशित किया, और उसी प्रकाश ने, जिस प्रकाश ने पेड़ को प्रकाशित किया उसने छाया तैयार कर दिया, उस पेड़ की छाया तैयार कर दी, और उस तैयार हुए हुए छाया को भी वही प्रकाश प्रकाशित कर रहा है। देखो पेड़ को प्रकाशित करने वाला जो भानु का सूर्य का प्रकाश है वही प्रकाश पेड़ के छाया को भी तैयार कर रहा है, छाया को भी बना रहा है, और उस बने हुए छाया को अपने प्रकाश से तैयार हुए हुए उस छाया को वो खुद भी प्रकाशित करता है। फिर भी छाया में व्यक्ति के क्या कहते हैं, छाया में प्रकाश नहीं है और पेड़ में प्रकाश है, ये कह देते हैं। पेड़ में तो सूर्य का प्रकाश पड़ा हुआ है, बोले छाया में प्रकाश है कि नहीं, बोले छाया में सूर्य का किरण नहीं पड़ा है, जबकि वो प्रकाशित हो रहा है उसी सूर्य के किरण से। सर्वान्नाच्छादयन् माया, सभी पदार्थों को आच्छादित करने वाली शक्ति का नाम, परमात्मा की शक्ति का नाम माया है, सारे पदार्थों को आच्छादित करने वाली। सर्वान्नाच्छादयन् माया विद्या व्याक्षिप्य दर्शये, एक ही परमात्मा की जो दो शक्ति है माया और विद्या, दोनों में ऐसा संघर्ष चलता है, दोनों में माया सभी पदार्थों को आच्छादित करके ढक देती है और विद्या उसके आवरणों को उस माया के द्वारा ढके हुए को माया को सब फेंक देती है। हाँ, और जब माया को मौका मिलता है तो पदार्थों को ढक देती है, जब विद्या को मौका मिलता है तो उसको उखाड़ फेंक देती है, जब माया को मौका मिलता है तो ढक देती है, जब विद्या को अवसर प्राप्त होता है तो उखाड़ के फेंक देता है। तो विद्या और माया दोनों परमात्मा की शक्ति है, ये शक्ति दोनों इस तरह खेलते हैं कि एक कभी पदार्थों को आवृत्त कर देता है तो कहता है कि पदार्थ प्रमोषित हो गए, यानी दिखाई नहीं पड़ रहा है, पदार्थ का मुझे भान नहीं है, हाँ? कहने लग जाते हैं मैं उसको नहीं जानता। क्यों नहीं जानते हो? तो आच्छादन कर दिया, परमात्मा की शक्ति से वो आच्छादित हो गया, इसलिए नहीं जानते हो। फिर कैसे जानोगे? उसी परमात्मा की शक्ति जो विद्या है उसका प्रयोग करो, तो फिर जब वो विद्या शक्ति सामने आ जाती है तो फिर वह माया के आवरण को हटा देती है। सर्वान्नाच्छादयन् माया विद्या व्याक्षिप्य दर्शयेत् प्रत्यभिज्ञैव सर्वेषां प्रमाणांच प्रमाणान्नांच साधनम्। तो अंदर ये निष्कर्ष निकाला गया कि सभी प्रमाणों का मूल साधन ही है प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा से ही वह विद्या की उत्पत्ति होती है, प्रत्यभिज्ञा ही विद्या के उत्पत्ति में हेतु है, और प्रत्यभिज्ञा रूप जो विद्या है वही माया का व्यावर्तक है और पदार्थ का प्रकाशक है। ईश्वरोन्यो अहम अन्यः, ये माया का आवरण किस प्रकार से होता है ये दिखा रहे हैं। ईश्वरो अन्य अहम अन्य, ईश्वर मेरे से भिन्न है, मैं ईश्वर से भिन्न हूं, ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, मैं अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान हूं, ईश्वर नित्य है जन्म मृत्यु रहित है और मैं अनित्य हूं जन्मने वाला और मरने वाला हूं, ये जो भान हो रहा है यह माया का आवरण है, यही ये माया के द्वारा आवृत होना आच्छादित होना, माया के द्वारा ढक जाना यही है। वो न अपने यथार्थ स्वरूप को जान पा रहा है न ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जान पा रहा है, इसलिए कह रहा है कि ईश्वर अन्य है मैं अन्य हूं। ईश्वर अन्यो अहम अन्य इति विच्छेद कारणम, यही विभेद का कारण है, विच्छेद कारण यही विभेद है, यही भिन्नता है, ईश्वर अलग है मैं अलग हूं। व्याक्षिप्य, इस विभेद यानी भिन्न भिन्नता के बोध का जो कारण है माया का आवरण, उसको विद्या ईश्वर की ही शक्ति रूप विद्या क्या करती है, व्याक्षिप्य उसको हटाकर, विद्या व्याक्षिप्य विद्या मायाम ईश्वरो अहम इति स्मृति, जब उसी ईश्वर की परमात्मा की शक्ति रूप विद्या के द्वारा वो भेदक ईश्वर अलग मैं अलग ये बोध कराने वाला भेदक माया का आवरण जब व्यक्षिप्त होता है हट जाता है, विद्या के द्वारा जब वो आवरण हट जाता है तो हटे हुए उसके बाद वही व्यक्ति क्या कहता है, सोहम लेव जी ईश्वरो हम। अरे मैं और ईश्वर में तो कोई अंतर ही नहीं रहा। तो भाई पहले ही अंतर नहीं था, पहले भी अंतर नहीं था। यह नहीं है कि पहले अंतर था और अब विद्या के द्वारा उस अंतर को हटा दिया गया, ऐसा नहीं है। पहले भी अंतर नहीं था, एक ही थे, फिर भी उसी ईश्वर की शक्ति जो माया शक्ति है उसके आवृत हो जाने पर यह विभेद खड़ा हो गया कि ईश्वर अलग है मैं अलग हूं। जैसे पानी और तरंग दोनों अलग नहीं है, पानी और तरंग दोनों अलग नहीं है, समुद्र और तरंग ये दोनों अलग नहीं है, पहले ही एक थे। अब बीच में थोड़ा सा हवा चल जाने के कारण, पवन के चलते तरंग अलग दिखने लगा। तो जिस समय तरंग दिखने लगता है तो उस समय में देखने वाले व्यक्ति को ये भ्रांति होता है कि पानी समुद्र अलग है और ये तरंग अलग अलग है। समुद्र अलग है, तरंग अलग है, ये भ्रांति होती है। तो तरंगों को समुद्र से अलग कर देने वाला तत्व और समुद्र को तरंग से अलग कर देने वाला विभेद तत्व, वह उस तरंग को उत्पन्न करने का कारण साधन वायु का वेग, उसके रहते हुए ये तरंग अलग अलग होंगे। लेकिन जब वेग हट जाता है, यानी वायु का वेग हट जाता है, पवन शांत हो जाता है, तब फिर वह तरंग उसी पानी में लीन होकर रह जाता है। तो बाद में जो तरंग पानी से अभिन्न हो गया तो पवन के हटने पर अभिन्न हुआ, ऐसा नहीं है। पहले भी अभिन्न था, अभी भी अभिन्न है, लेकिन वह कारण बन गया विभेद का कारण। वह हटते ही विभेद नहीं होता। इसी तरह अहम और ईश्वर, परमात्मा और मैं, ये हम पहले से ही एक हैं, अभी भी एक हैं और बाद में भी एक ही हैं, दो अलग अलग चीज नहीं है। लेकिन माया की जो शक्ति है, ईश्वर की जो माया शक्ति है, उस शक्ति के चलते ऐसा भ्रांति हो गया है कि ईश्वर अन्य अहम अन्य, ईश्वर अलग है मैं अलग हूं, ये विभेद हो गया। परंतु उसी परमात्मा की जो विद्या शक्ति जब काम करती है तो ये विभेद के जो कारण है उसको हटा देता है। तब कहता है कि अरे ईश्वर में और मुझ में तो कोई अंतर नहीं है, यही तत्वमसी है। ईश्वर अन्यो अहम अन्य इति विच्छेद कारिणम व्याक्षिप्य विद्यया माया ईश्वरोहम इति स्मृति। ईषत् प्रकाशो भूत ईशो माया यवनिकावृत सम्यक आवरणापाये सहस्रांशोरिव स्फुरेत। जैसे सूर्य बाहर स्पष्ट प्रकाशित हो रहे, कोई बादल नहीं है, एकदम प्रकाशित है, फिर भी कमरे के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति पर्दा लगा हुआ होता है तो उस पर्दे के माध्यम से जब सूर्य को देखता है तो सूर्य के उस प्रकाश का अनुभव नहीं कर पाता। ईषत् प्रकाश का अनुभव तो करता है, थोड़े थोड़े प्रकाश बाहर है, सूर्य का प्रकाश बाहर है, बिल्कुल सूर्य नहीं है ऐसा नहीं कह रहा। बाहर सूर्य उदय गए हैं, उग आ गए हैं, सूर्य ऊपर आ गए हैं, उदय हो गए हैं, और प्रकाश भी बाहर सूर्य का प्रकाश है। पर्दे के माध्यम से जब बाहर देखता है तो उस सूर्य के पूरा प्रखर प्रकाश नहीं देखता, मंद प्रकाश देखता है, कम प्रकाश देखता है, तेज प्रकाश नहीं देखता। जब पर्दा हटा दिया जाता है तो सूर्य का पूरा प्रकाश देखता है उसको सहस्रांशु। इसी तरह माया के आवरण होने पर वो खुद अपने आप को मंद प्रकाश वाला मानता है और कहता है कि मैं अज्ञानी हूं, अल्पज्ञ हूं, अल्पशक्ति वाला हूं। वह ज्ञान को भी अल्प के रूप में अपने अनुभव कर रहा है, शक्ति को भी अल्प के रूप में देख रहा है, अनुभव कर रहा है। जैसे पर्दा हटते ही सूर्य के पूरा प्रकाश देखता है, सहस्रांशो प्रखर प्रकाश का अनुभव करता है, इसी तरह विद्या के द्वारा माया जवनिका, जवनिका पर्दा, नाटक में जवनिका शब्द प्रयोग करते हैं, पर्दा, एक पर्दा होती है, वो व्यक्ति वही है, लेकिन पर्दा जब सामने आ जाता है तो वो वस्तु दिखता नहीं है। कलाकार स्टेज में बैठा है, कुर्सी में बैठा है, क्या क्या कर रहा है सब कुछ दिख रहा था जब पर्दा नहीं थी, और जब अचानक बीच में पर्दा गिर जाता है वो व्यक्ति वही होता हुआ भी दिखता नहीं है, और फिर ही वो पर्दा हट जाता है तो फिर वो दिखने लगता है, फिर पर्दा आ जाता है तो दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति गया और नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं है, वही होता हुआ भी पर्दा के कारण स्पष्ट भान नहीं हो रहा है। इसी तरह ये माया जवनिका परमात्मा और हमारे बीच में, हाँ, उस परमात्मा के सर्व शक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान का अपने में होने वाला जो अनुभव है वह अनुभव को रोकता है माया जवनिका, माया के पर्दा से। इसलिए अपने में विद्यमान वो भाव अपने आप को भान नहीं होता, और जब वो हट जाता है तब फिर स्पष्ट भान होता है। ईषत् प्रकाशो बुद्ध ईशो माया जवनिका वृत सम्यक आवरणा पाये सहस्रांशुरिव स्फुरेत न कारणानां व्यापारात प्रमाणान वा न वा पुनः प्रत्यभिज्ञापनान नाम मोहापसरणं परम। एक और नई बात कह रहे हैं, ये प्रत्यभिज्ञा जो है या प्रमाण जितने भी हैं ये पदार्थों को उत्पन्न नहीं करते, वस्तुओं को उत्पन्न नहीं करते। प्रत्यभिज्ञा किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता, प्रमाण किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता है, बात समझ रहे हैं ना। फिर क्या करते हैं, तो प्रमाण और प्रत्यभिज्ञा क्या करते हैं, खाली मोह का अपसरण कर देते हैं। जितने भी प्रमाण हैं इन सारे प्रमाणों का काम क्या है, पदार्थों को नया उत्पन्न करना नहीं, पहले से ही विद्यमान पदार्थ उसमें एक जो मोह है, मोह शब्द का अर्थ है अज्ञान या माया, माया उपलक्षित मोह, माया उपलक्षित अज्ञान, अज्ञान उपलक्षित मोह, मोह अज्ञान माया एक समानांतर है, पर्यायवाची शब्द है ये सब। तब ये प्रमाण और प्रत्यभिज्ञा का काम क्या है, पदार्थों को उत्पन्न करना इनका काम नहीं है, नया पदार्थ बनाकर सामने रख देना इनका काम नहीं है, पहले से ही विद्यमान सिद्ध जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में मोह का जो आवरण, विद्या का आवरण, माया का जो आवरण पड़ा हुआ है उस मोह का अपसरण करना यानी हटा देना इनका काम है प्रत्यभिज्ञा का। यावन्ति सन्ति मानानि व्यवहार प्रवृत्तये तेषां मोहापसरणात् व्यापारो अन्यो न विद्यते। यावत् व्यवहार योग्य पदार्थ का जब तक अज्ञान रहता है, वो अज्ञात रहते हैं वो पदार्थ, तब तक वह व्यवहार के योग्य नहीं हो पाते, उनके साथ हम व्यवहार नहीं कर पाते, बात समझ रहे ना। जब तक पहले से सिद्ध पदार्थ वह मोह के आवरण से यानी अज्ञान के आवरण से आवृत रहते हैं तब तक हम उस पदार्थ को जानते नहीं और उस पदार्थ के साथ व्यवहार नहीं कर पाते। और उस व्यवहार करने के लिए क्या चाहिए, उस मोह का अज्ञान का अपसरण होना पड़ेगा यानी हटना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए दो ही कारण, यह तो प्रमाण है या फिर प्रत्यभिज्ञा है। प्रमाण और प्रत्यभिज्ञा ज्ञान ये उस मोह का अपसरण करता है तो पहले से ही विद्यमान पदार्थों का प्रकाशन हो जाता है, भान होता है, उसका ज्ञान हो जाता है। जब पदार्थ का ज्ञान हो जाता है तो सारा लौकिक व्यवहार भी हम करने लगते हैं। इसलिए पहले प्रश्न किया था अस्ति व्यवहार इति, अस्ति प्रकाशते इति व्यवहारो प्रवर्तते। समस्त व्यवहार में ये दो चीज होना जरूरी है, एक तो पदार्थ का होना जरूरी है, दूसरा उस पदार्थ का ज्ञान जरूरी है। पदार्थ है, पदार्थ का ज्ञान नहीं है तो व्यवहार नहीं हो पाएगा। पदार्थ का ज्ञान है, पदार्थ नहीं है तो भी व्यवहार नहीं हो पाएगा। पदार्थ भी होना चाहिए और पदार्थ का ज्ञान भी होना चाहिए। पदार्थ पहले से विद्यमान है, मोह के आवरण से ढका हुआ है तो पदार्थ का ज्ञान नहीं है, तो पदार्थ होते हुए भी हम व्यवहार नहीं कर पाते हैं, तब वो मोह अपसरण हो जाता है। तो क्या होता है, पदार्थ है ही है, अब प्रकाशित भी हो गया तो सारा व्यवहार होता है। तेसा मोह अपसरणात व्यापारो अन्यो न विद्यते। जड़ा नृत परिच्छिन्न देह धर्मादिश्चात्मनि। देखो आवरण कितनी कितनी रूप में अपने स्वरूप को आवृत किया हुआ है, या दूसरी भाषा में कहें मोह अज्ञान कितने कितने स्वरूप में अपने स्वरूप को आवृत करके बैठा हुआ है। जड़ान अनिर्ता परिच्छिन्न देह धर्मादि च, ये देखो जड़ देह अनित्य देह, अनिर्त माने अनित्य देह, नाशवान को अनिर्त कहते हैं, सत्य को नृत कहते हैं ऋत, और असत्य को मिथ्या को अनिर्त कहते हैं। जनान जड़ान अनिर्त परिच्छिन्न, और ये परिच्छिन्न है, देह धर्मादि च आत्मनि, और आत्मा कैसा है, सत्य ज्ञान सुखात्मत्व, आत्मा है सत्य रूप, ज्ञान रूप सुख रूप, और शरीर है जड़ रूप परिच्छिन्न रूप और अनात्म रूप अज्ञान रूप। वह इस आत्मा सत्य नित्य ज्ञान सुख स्वरूप आत्मा को ढक दिया है, और ढक देने के कारण ही उस सुखद रूप आत्मा के साथ हमारा व्यवहार नहीं हो पा रहा है, माने सुख मुझ में ही है, अन्यत्र मुझे खोजने की जरूरत नहीं, ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अन्यत्र खोजने लग जाते हैं। नित्य मुझ में भी है, मुझ में ही है, अन्यत्र नित्यता खोजने की जरूरत नहीं, ये नहीं हो पाता है। ये आवरण इन सब रूपों में उसको आवृत किया हुआ है, उसी का नाम मोह। ये मोह के चलते मोहा देहे पी कल्प्यते, उसी मोह के चलते कहता है कि आत्मा को मैं नहीं जानता हूं, मैं देह को जानता हूं। हाँ, शरीर आदि में सुख प्रतीत होता है, आत्मा में सुख है ये मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। सुक्तौ रजत मित्येवम यथा व्यामुह्यते अन्यथा सदैव रूप्यचेत भाति विलयस्ते न चिद्यति। जब प्रमाण के द्वारा ये सिद्ध हो जाता है कि यह सीपी है चांदी नहीं है, तब फिर वह प्रतीत होने वाला चांदी वही विलय भाव को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मैं कूटस्थ सच्चिदानंद अद्वितीय कूटस्थ हूं, ये बोध प्रतिविज्ञा के द्वारा हटते ही अपना स्वरूप अपरोक्ष होते ही ये माया हट जाएंगे, या ये माया के आवरण के हटते ही अपना स्वरूप अपरोक्ष हो जाएगा, इसी को प्रत्यविज्ञा कहते हैं। न अत्यंत असत प्रकाशेत नरसृंगादिवत क्वचिद कांताकारो रजस्तिमी स्याद स्मरण भ्रमेह। ये माया कैसी है, तो माया के बारे में कहा ये अत्यंत असद भी नहीं है, मनुष्यों के सींग की तरह ये माया अत्यंत असद भी नहीं है, और यह आत्मा की तरह सत भी नहीं है। असत इसीलिए नहीं है क्योंकि ये व्यवहार हो रहा है, सत इसीलिए नहीं है कि प्रत्यविज्ञा के द्वारा यह अपसरण हो जाता है, ये बाधित हो जाता है, इसीलिए इसको सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, और सत असत उभय रूप ये विरोधाभास होने के कारण उभय रूप भी नहीं मान सकते। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में माया का लक्षण करते हुए शंकराचार्य ने कह दिया है, सन्नाप्य सन्नाप्य वे आत्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य वे आत्मिकानो सांगाप्य नांगाप्य वे आत्मिकानो महत भूता निर्वचनीय रूपा माया, यह अनिर्वचनीय माया है। यह केवल यह माया भी परमात्मा की शक्ति है, लेकिन मोहात्मिका आवरणात्मिका है। विद्या भी परमात्मा का ही शक्ति है, परंतु यह माया का तिरोधान करने वाला माने अपसारण करने वाला, हटाने वाला है। यही माया और विद्या का अंतर है। ये प्रतिविज्ञा का विचार चल रहा है, समय हो गया है। आगे सातवां श्लोक में महत्वपूर्ण पक्ष है, स्वात्मानं प्रकटि करोति भजताम यो मुद्रया भद्राया। ये भद्रा मुद्रा, चीन मुद्रा को भद्रा मुद्रा कहते हैं। भगवान दक्षिणामूर्ति शिव ने सनत सुंदरात को, सनत कुमारों को, जो उनकी जो मोह है, माया है, भगवान शिव ने केवल इस मुद्रा के द्वारा उन माया को, मोह का अपसरण कर दिया था, माया के पर्दे को हटा दिया था। वह क्या है, कैसा है, इसके बारे में कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
4: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Pusalar Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम और एक दक्षिण भारतीय संत या नायनमार की कहानी सुनेंगे, जिनका नाम पूसलार है। प्रिय पुराणम में एक भक्त की कथा का वर्णन है, जो शिव की मानसिक उपासना के महत्व को प्रतिपादित करती है। तुंडई मंडलम में तिरुनिंद्रपुर वेदांगम पंडितों से भरा नगर था। इसी नगर में पूसलार का जन्म हुआ। पूसलार की प्रबल इच्छा थी कि अगम वर्णित विधि विधान से भगवान शिव के लिए एक भव्य विशाल मंदिर बनाया जाए, परंतु आवश्यक धन सामग्री जुटा पाना उनके वश में नहीं था, इसलिए वे चिंतातुर रहते थे। मंदिर बनाने के संकल्प से वे लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने मन के भीतर ही मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। मन ही मन मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री, बड़ई और शिल्पी, इन सब की संकल्पना कर ली और धीरे धीरे मंदिर निर्माण का कार्य पूरा किया। जब मन मंदिर निर्मित हो गया तो मूर्ति स्थापना और कुंभाभिषेक के लिए श्रेष्ठ दिन और मुहूर्त की भी संकल्पना उन्होंने कर ली थी। इसी समय उस देश के राजा राजसिंह पल्लव महाराज ने कांचीपुरम में एक विशाल कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। इस मंदिर के कुंभाभिषेक के लिए राजा ने जो दिवस और मुहूर्त निश्चित किया, संयोग से पूसलार के मानसिक मंदिर के कुंभाभिषेक का भी वही दिन था। कुंभाभिषेक से एक दिन पूर्व भगवान शिव ने महाराज के स्वप्न में आकर कहा, तिरुनिंद्रपुर में पूसल ने अपने दीर्घकाल के संकल्प से जो मंदिर बनाया है, मैं उसमें बसने के लिए कल जा रहा हूँ, तुम अपने कार्यक्रम की तिथि आगे बढ़ा लो। आश्चर्यचकित राजा अगले दिन तिरुनिंद्रपुर पहुंचे। सोचा पूसलार के भव्य मंदिर के कुंभाभिषेक में भाग लेंगे। वहां पर जब कोई मंदिर न मिला तो राजा ढूंढते ढूंढते पूसलार के घर पहुंच गए। राजा ने पूसलार से कहा, महोदय, यह जानकर कि आज शुभ मुहूर्त है, मैं आपके द्वारा निर्मित मंदिर का कुंभाभिषेक संपन्न हो रहा है, मैं उसके दर्शन के लिए आया हूँ। भक्त पूसलार भगवान की असीम अनुकंपा को अनुभव कर अभिभूत हो गए। मित्रों से स्नेह की अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अपने द्वारा निर्मित मनोमंदिर का सारा वृत्तांत राजा को विस्तार से बताया। भगवान के असीम अनुग्रह और भक्त की अपार निष्ठा से राजा भी भाव विभोर होकर भक्त कुशलार को प्रणाम कर वापस लौटे। प्रत्येक धर्म में भगवान के असंख्य भक्त मिलेंगे, इनके अनेकानेक आख्यान भी धर्म ग्रंथों में उपलब्ध हैं। अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए अनेक संत भक्तों ने त्याग किया है। पेरी पुराणम में वर्णित कुशलार की कथा अपने आप में अद्भुत है। मानसिक मंदिर का निर्माण, उसने प्राण प्रतिष्ठा और कुंभाभिषेक का मुहूर्त निकालना कुशलार की श्रद्धा भक्ति का चरम उत्कर्ष है। उस राज्य के नरेश ने भी विधिवत मंदिर निर्माण करवाया। संयोग से कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का एक ही दिन निश्चित हुआ। भगवान ने कुशलार के मन मंदिर में जाने का निर्णय किया और नरेश राक्षसी पल्लव को स्वप्न में इसकी सूचना दी। इसका उल्लेख कांचीपुरम में निर्मित कैलाशनाथ मंदिर के शिलालेख में आज भी उपलब्ध है, जहाँ राजा द्वारा दैववाणी सुनने की घटना की सूचना है। महाराज राक्षसी पल्लव ऐतिहासिक पुरुष थे। शैव धर्म में उनकी अधिक आस्था थी। अपार धनराशि व्यय करके बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। इसकी तुलना में भगवान ने कुशलार द्वारा मन के संकल्प द्वारा निर्मित मंदिर को श्रेष्ठ माना। इस घटना से शैव धर्म की श्रेष्ठता आकाश को स्पर्श करने लगती है। भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र निवास करते हैं, सब कहीं एक साथ हैं। इस घटना के मूल के बाद में भाव यह है कि अत्यंत कोलाहल आडंबर के साथ बनाए गए पत्थर के मंदिर की अपेक्षा बिना आडंबर के मानसिक रूप से निर्मल संत द्वारा भगवत प्रेम का सहारा लेकर बनाया गया मंदिर भगवान को अधिक प्रिय है। इससे मंदिरों का महत्व कम नहीं होता, अभी तो मानसिक रूप से समर्पित भक्त का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि कुशलार की मन की इस मंदिर की सूचना राजा को जब मिली तो उन्होंने भाव विभोर होकर कुशलार को नतमस्तक होकर प्रणाम किया था। कुशलार जैसे महान संत बहुत विरले और बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन उनका दुनिया में भगवान शिव में और शैव भक्त में एक उत्तांत स्थान है, एक उत्कृष्ट स्थान है। इसलिए हम ऐसे महान भक्त कुशलार को नमन करते हैं और मन से उनकी नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय।
6: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
7: जो पुराना व्यक्ति वो आकर कहे हमसे, स्वामी आत्मचेतन जी आप हैं, तो हम क्या कहेंगे बोलो? नहीं है बोलेंगे कि हां बोलेंगे? हैं? क्या बोलेंगे आप? हां बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब हम जब कहेंगे कि हां मैं आत्मचेतन हूं, तो कोई नया भक्त कहेगा अरे ये तो आत्मानंद जी है। नहीं नहीं ये तो आत्मानंद जी है। अब आत्मानंद जी है ना, तो उसको मैं क्या कहूंगा? हाँ नहीं थोड़ी बोलेंगे। हां हां हम आत्मानंद जी है। दूसरा कोई था अरे आत्मानंद नहीं आत्मचैतन्य है ना आप, बोले हां। अब क्या हुआ भाई, एक ही व्यक्ति का दो नाम हो गए कि नहीं? अब आत्मचैतन्य बड़ा कि आत्मानंद बड़ा, बोलो कौन बड़ा है? आत्मचैतन्य बड़ा है कि आत्मानंद बड़ा है? ये दोनों नाम जिसके हैं वो बड़ा है। हमको तो व्यक्ति से मतलब है, नाम से क्या लेना है? नाम पर दुराग्रह मत करो। व्यक्ति पहचान लिया काम बन गया कि नहीं? तुमको व्यक्ति पहचानने से मतलब है, नाम माध्यम बन गया। अब परमात्मा की भक्ति करनी है, उसी परमात्मा का एक नाम हो गया कृष्ण। उस कृष्ण इस नाम के माध्यम से तुम किसकी भक्ति करो? परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति करनी है तो एक नाम बन गया शिव। शिव इस नाम के माध्यम से किसकी भक्ति करनी है? परमात्मा की, शिव की नहीं, परमात्मा की। राम एक नाम हो गया, तुम्हें परमात्मा की भक्ति करनी है तो राम इस नाम के माध्यम से किसकी भक्ति करनी है? परमात्मा की। तो भक्ति करनी है परमात्मा की। सबसे बड़ा परमात्मा है, न कृष्ण बड़ा है न शिव बड़ा है, है? कृष्ण प्लस भगवान, क्या बोलते हैं हम? कृष्ण भगवान है, शिव प्लस भगवान क्या बोलेंगे? शिव भगवान। राम प्लस भगवान, राम भगवान। राम में कृष्ण नहीं, कृष्णन में राम नहीं, राम और कृष्ण दोनों शिव में नहीं, और शिव राम कृष्ण में नहीं। ये जो शिव राम कृष्ण ये जो नाम है, एक में दूसरे का व्यतिरेक है, है कि नहीं? एक में दूसरे का अभाव है। नाम का एक नाम में दूसरे नाम का अभाव है। कृष्ण इस नाम में शिव नहीं है, शिव इस नाम में कृष्ण नहीं, ये परस्पर

तुमको भूख लगी हो? लग गई? नहीं लगी? बोलो, भूख लगी हो, उस भूख को हटाने के लिए क्या उपाय है तुम्हारे पास? है रोटी खाना है कि भात खाना है? बोलो, रोटी खाने से वो भूख हटेगा कि भात खाने से भूख हटेगा? पूरी खाने से हटेगा कि परोठा खाने से हटेगा? बोलो, क्या खाने से हटेगा? भोजन से भूख हट सकता है। किससे हटेगा भूख? हाँ, किससे भूख हटेगा? तुम भूख हटाने के लिए रोटी खाओगे कि भोजन खाओगे? हाँ बोलो, भूख हटाने के लिए केवल रोटी खाओगे कि भोजन खाओगे? भूख हटाने के लिए केवल भात खाओगे कि भोजन खाओगे? भूख हटाने के लिए भोजन खाओगे कि पराठा खाओगे? भूख हटाने के लिए भोजन खाओगे कि पूरी खाओगे? इसी के यहां खाना खाने गए, स्वामी जी ने पूरी दो। अरे भाई, अभी तो मरा नहीं है, कहां इसको पूरोगे? क्योंकि सन्यासी को तो पूरते है ना। पूरते माने सन्यासी को तो अग्नि संस्कार करते नहीं है, है? तो क्या करते हैं, थल समाधि या जल समाधि? तो जल समाधि में तो पूरने का क्या है, लेकिन थल समाधि जहां होगी, भूमि में जो समाधि दिया जाएगा, तो वहां क्या करेंगे? तब जाकर स्वामी जी को पूर दो, स्वामी जी ने पूरी दो। हाँ, नहीं तो क्या करो? बोलो, तो तुम्हें भूख लगी है, उस भूख को हटाने के लिए पूरी खाओगे कि भोजन खाओगे? है भोजन, भोजन से ही भूख की निवृत्ति होगी। ये बात अलग है कि पूरी भी भोजन है, लेकिन केवल पूरी भोजन नहीं है। क्या समझे? केवल पूरी भोजन नहीं, पूरी भी भोजन है, केवल पूरी भोजन नहीं है, पराठा भी भोजन है कि नहीं? और केवल पराठा पूरी नहीं, भोजन नहीं है, पराठा भोजन है, क्योंकि भूख को हटा सकता है, भूख निवृत्त करने की क्षमता पराठा में है। लेकिन यदि कोई कहेगा कि नहीं, हम तो केवल पराठा खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, तो वो बद्रीनाथ जाएगा तो मर जाएगा। आजकल तो नहीं मरेगा वो, पहले के जमाने में तो कहां पराठा मिले बद्रीनाथ में, केदारनाथ में? सत्तू और चिवड़ा बांध कर ले जाते थे। हाँ, सत्तू और चिवड़ा, चना, ये सब सूखा चीज, वो पानी में डाला, थोड़ा नमक डाला, खा लिया, चल दिया यात्री। कहां पूरी, कहां हलवा, ले जी। तुमको भोजन खानी है बस, क्योंकि पूरी, सब्जी, रोटी, हलवा, सब कुछ भोजन है। तब तुमको भोजन से भूख की निवृत्ति होगी। अब यदि तुम कहो कि नहीं, मुझे तो रोटी खानी है, रोटी से भूख हटाना है, रोटी के अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो तुमको रोटी तो परिच्छिन्न हो गया, सब जगह रोटी ना भी मिल सकता है, लेकिन भोजन सब जगह मिल जाएगा। हर समय में रोटी नहीं मिल सकता है, लेकिन भोजन, रोटी नहीं तो भात खाओ, देख लो। हम पिछले बार अमेरिका गए, अब ये शरीर में शुगर है, शरीर में शुगर है तो खान पीन में ध्यान रखना ही पड़ेगा, है ना? तो खान पीन में ध्यान रखना है, तो हम तो भात तो खाते नहीं थे। अब एक जगह भोजन के लिए खाली भात रखा हुआ था और कुछ नहीं था, तो नेपालियों के जो सोसाइटी थी वहां चले गए, कम्युनिटी सोसाइटी नेपालियों की, वो तो खाली भात खाते, सब ने खाली भात बनाकर रखा है, दाल भात तरकारी, सब लोग खाना खाने, महाराज खाना खाइए। तो देखते हैं तो अरे रोटी नहीं है, नहीं महाराज, अब क्या करोगे? बोलो, रोटी खाना है कि भोजन खाना है? भूख लग रही है, अब उसको, भूख को हटाना है।

हमारा प्रयोजन है। अब हम कहेंगे कि नहीं रोटी खाएंगे, रोटी से ही हमारा भूख जाएगा, तो तुम मरेंगे कि नहीं? तब फिर भात था, भात खा लिए। तो एक यही खाना है, ये दुराग्रह है। इतना ही भोजन है, ये दुराग्रह है। पूरी केवल भोजन है, ये दुराग्रह है। पराठा भोजन है, दुराग्रह है। भात केवल भोजन है, दुराग्रह है। हलवा भी भोजन है, सब भोजन है। भूख निवृत्ति भोजन से होती है, पूरी से नहीं। क्योंकि पूरी से भी होती है, क्योंकि पूरी भी भोजन है। इसी तरह दुख निवृत्ति किससे होती है बोलो? भूख की निवृत्ति भोजन से होती है, तो दुख की निवृत्ति किससे होती है? भगवान से। क्योंकि कृष्ण भी भगवान है, इसलिए कृष्ण की भक्ति कर लो, तो भगवान की भक्ति हो गई तो दुख निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन तुम यदि कहोगे कृष्ण ही भगवान है, इसके अलावा और भगवान नहीं है कहोगे, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। तो किसकी भजन करनी है? भगवान के। बस सबसे बड़े कौन है? कृष्ण की शिवा। ये अब समझ में आ गया आपको? सबसे बड़े राम है कि कृष्ण है कि शिवा है कि गणेश है? सबसे बड़े परमात्मा है। इसलिए किसकी भक्ति करनी है? परमात्मा की। कृष्ण यदि परमात्मा है तो कृष्ण भक्ति करो, तुम्हारी कृष्ण भक्ति वृथा बेकार नहीं जाएगा। राम यदि भगवान है तो राम भक्ति करो, तुम्हारी भक्ति वृथा निष्फल नहीं होगा। शिव यदि भगवान है तो तुम शिव भक्ति करो, तुम्हारी शिव भक्ति निष्फल नहीं होगा। लेकिन ये दुराग्रह नहीं कर देना भाई, दुराग्रह करके नहीं बैठना। मैं तो केवल शिव की ही भक्ति करूंगा, शिव के अलावा और किसी की नहीं करूंगा, ये कहना। मैं केवल पूरी को भोजन मानता हूं, पूरी के अलावा किसी को भोजन नहीं मानता, इसलिए पूरी ही मेरे भोग को निवृत्त कर सकते हैं और पूरी के अलावा और कोई भी मेरे भूख को निवृत्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे इसका मतलब ऐसा अर्थ हो गया। भोजन भूख को निवृत्त करता है, भगवान दुख को निवृत्त करते हैं, भगवान की भक्ति करो। अब उस परमात्मा को, उस भगवान को जानने कैसे? जानने का माध्यम क्या है? कौन जानता है परमात्मा को? तो बोले त्रैवेद्यम हृद्यम। ये वो परमात्मा त्रैवेद्य है। शंकराचार्य जी भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे शिव, आपको केवल त्रयी ही जान सकते हैं, त्रयी वेद्य हैं आप। त्रयी वेद्य माने त्रयी का अर्थ वेदत्रय, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और आप कहोगे कि वेद तो चार है, फिर यहां त्रयी क्यों कह दिया? अथर्व वेद क्या है महाराज? अथर्व वेद वास्तव में इन तीन वेद के मंत्रों का ही संकलन है। अथर्व वेद के मंत्र जो हैं, वह ऐसा कोई मंत्र नहीं जो ऋग, यजुर और साम में न हो। हर मंत्र अथर्व वेद के, हर मंत्र ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में है, सामवेद में, ये तीन में से किसी न किसी एक में है। उन मंत्रों को विशेष अनुष्ठान के लिए अथर्व वेद, इन मंत्रों के उस अनुष्ठान के अनुकूल मंत्रों को मंत्र द्रष्टा ऋषियों ने एक निकालकर एक अलग स्वतंत्र अथर्व वेद के रूप में कल्पना कर दी। लेकिन उसके जारी मंत्र है तीन वेद में, इसलिए मूल रूप में वेद त्रयी तीन ही हैं, ऋग, यजुर्वेद, सामवेद। तो यही तो हमने गीता के उदाहरण दिया ना आपको। भगवान ने क्या कहा? वेदश्च सर्वैहि अहम् एव वेद्य, सर्वैहि वेदैः अहम् एव वेद्य, अहम् वेदैरेव वेद्य। स्वामी अखंडानंद जी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस गीता के श्लोक में, शंकराचार्य जी ने संस्कृत भाषा में ठीक ऐसी व्याख्या की है, वेद्यैरेव, अहम् वेद्यैरेव,
हर मनुष्यों को ये चाहिए कि मुझे अवश्य जाने। अहम एव वेद्य, मनुष्यों के द्वारा जानने योग्य व्यक्ति हर वस्तु कुछ है तो वो मैं ही हूं, और को जाने चाहे न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता है, और को जानो चाहे न जानो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे जरूर जानो। मुझे जाने बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ, अहम वेद्यैरेव, मुझे जानना ही चाहिए। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्ता विद्यते अनाय, उसको जाने बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ? संसार और सांसारिक पदार्थों को नहीं भी जानोगे तो भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन उसको नहीं जानोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला है। तुम जहां के वहीं रहोगे। अपरा विद्या को जानकर क्या कर लोगे, बोलो क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। द्वैविद्य वेदितव्ये पराचैव अपराच, और अपरा विद्या को जानकर तुम्हें क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तुम्हारा प्रयोजन है दुखत्रय की अत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति तुम्हारा प्रयोजन है, और वो प्रयोजन सिद्ध अपरा विद्या से होने वाला नहीं है। यया यद अक्षरम अधिगम्यते तत् परा, मुंडक उपनिषद की श्रुति। तो उसको जाने बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध न होने के कारण गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा, अहम वेद्यैरेव, तुम्हारा कल्याण तो मुझे जानकर ही होगा। अहमेव वेद्य, जानने योग्य केवल मैं हूं, बाकी और जानने योग्य नहीं है। हाँ? काम चलाने के लिए जान लो तो जान लो, नहीं तो जानने योग्य नहीं है, जान के क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिरने के लिए, और तो सब पेड़ गिरने की है, प्रयोजन तो आम खाना है ना, वो तो उसी से प्रयोजन सिद्ध होगा भाई। वेद ही रे, फिर आप जानेंगे कैसे, तो वेद के द्वारा ही मैं जानूंगा। वेद अर्थात औपनिषद, तम तम औपनिषद पुरुषम पृच्छामि। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, महाराज मैं उस औपनिषद पुरुष को जानना चाहता हूं। उस औपनिषद पुरुष क्या है, औपनिषद माने उपनिषद प्रतिपाद्य जो पुरुष है वो औपनिषद पुरुष है, वो तो फिर उपनिषद के द्वारा ही जाना जाएगा। इसीलिए सही रूप में भगवान शिव क्या है यह वेद के द्वारा ही जाना जाएगा। अतः शंकराचार्य ने कहा, हे शिव त्रयी वेद्यम, आप कैसे हैं, त्रयी वेद्य है, वेद से ही आप पूर्ण रूप में जाना जाएंगे। हा? और कैसे हैं आप, तो हृदयम, आप वो जो त्रयी वेद्य स्वरूप है वह हृदयम, हृदय का अर्थ होता है हृदय को अति प्रिय, क्या हृदय में अपरोक्ष अनुभूत होने वाला, हृदय के अतिरिक्त परमात्मा का अनुभव करने का कोई आलंबन नहीं है ना। चैतन्य का अनुभव अनुभूति कराने वाला एक ही केंद्र है, एक ही पॉइंट है दुनिया में, वो पॉइंट उस केंद्र का नाम है हृदय। हृदय होगा तो वह चेतना अभिव्यक्त भी होगा और चेतना की अनुभूति भी होगी। जहां हृदय नहीं होगा वहां चेतना तो है लेकिन अनुभूति अनुभव गम्य नहीं होगा। तुम्हारे इस कुर्सी में शिव है कि नहीं, बोलो, जिस कुर्सी में तुम बैठे हो उस कुर्सी में शिव है कि नहीं, क्या अपराध कर रहे हो तुम, कुर्सी शिव जी के ऊपर चढ़ के बैठे हो है? तो तुम यही कहोगे कि शिव नहीं है इसलिए ना बैठो, नहीं तो प्रत्यवाय लगेगा कि नहीं शिव जी के ऊपर चढ़ के बैठ जाना। और ये कहां की मूर्खता है भाई, एक तरफ शिव को तुम सर्वव्यापक कहते हो और दूसरी तरफ ये कहते हो कि कुर्सी में शिव जी नहीं है, तो ये मूर्खता है कि नहीं है। शिव जी सर्वव्यापक है तो कुर्सी में है कि नहीं, कुर्सी में है तो तुम शिव जी के ऊपर चढ़कर बैठे हो कि नहीं, अब उस अपराध का कौन क्षमा करेगा। हा?
बोलो, उस अपराध को क्षमा कौन करेगा? वो जमीन में शिवजी है कि नहीं है? जमीन में शिवजी है कि नहीं? अब तुम जूता पहनकर, चमड़े की जूता पहनकर चलोगे तो कहां चलोगे? बोलो। हाँ, भगवान शिव की महिमा पुराणों में ऐसा लिखा है, और शिव महिमा तो तुम लोगों को याद ही है ना। त्वमर्कस त्वम सोमस त्वमसि पवनम त्वम हुतवस त्वमापस त्वम व्योम त्वम धरणी। ये स्तोत्र क्या कह रहा है? त्वम धरणी, ये जो पृथ्वी है ये गोल क्यों है? बोलो, पृथ्वी चपटी क्यों नहीं है, लंबी क्यों नहीं है? पृथ्वी गोल क्यों है? क्योंकि शिवलिंग हमेशा गोल ही होता है, इसलिए ये शिवलिंग है पृथ्वी। बोलो, अब जूता पहनकर कहां चलोगे? हैं, कहां चलोगे? शिवजी के ऊपर ही चलना पड़ेगा कि नहीं? अब उस प्रत्यवाय से तुम कैसे मुक्त होगे? उस अपराध से तुम मुक्त कैसे होगे? हैं? क्षमस्व त्रिविधा अपराधम। हे शिव, मेरे से पल पल में, पग पग में, एक एक क्रिया में अपराध हो रहा है। उस अपराध से मुक्ति का एक ही उपाय है कि तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं। हाँ, क्योंकि पृथ्वी में यदि कोई व्यक्ति, पृथ्वी में चलते चलते यदि कोई व्यक्ति फिसल गया तो कहां फिसला? धरती में फिसला। और वो प्रयत्न करके उठेगा तो कहां उठेगा? अरे फिसला वहीं, जहां फिसला वहीं उठेगा, तो क्या फायदा हुआ उठने का? है? लेकिन दूसरा आलंबन तो है भी नहीं, तो उठे कहां? धरती में फिसल गए करके यदि धरती में मैं नहीं उठूंगा कहोगे तो फिर पड़े रहो, और उठना होगा तो कहां उठना होगा? उसी में। इसलिए शिवक की अवज्ञा यदि हमारे अज्ञानता से या व्यवहार में शिव अवज्ञा अनिवार्य है, होता ही है, तो उसका क्षमा कौन करेगा? तो वही करेंगे। कैसे करेंगे? हाथ जोड़ लो, बस हो गया। क्षमस्वा, ये शिवानंद लहरी ऐसे भाव भरा स्तोत्र है। क्या भाव भरा है! बुद्धि को लेकर शिवानंद लहरी सुनने नहीं आना हो, हाँ, बुद्धि को लेकर शिवानंद लहरी सुनने आओगे तो बुद्धि में तो तर्क वितर्क चलेंगे, और उस तर्क वितर्कों के सामने ये शिवानंद लहरी है वो टिक नहीं पाएगा। ये तो भाव लेकर आओ, क्योंकि हृदय में आकर वो सरोवर के रूप में परिणत होगा। ये तो हृदय में, हृदय में भाव, ये तो भाव पूर्वक श्रवण करने का स्तोत्र है। ये खंडन मंडन करने का नहीं है। यहां तर्क वितर्क उहा पोह खंडन मंडन उसके लिए करो, ब्रह्मसूत्र है। हाँ, न्याय प्रस्थान है, ब्रह्मसूत्र है, करो तर्क वितर्क। लेकिन ये तो भाव पूर्वक श्रवण करो। त्रयी वेद्यम, आगे इसके जो चौथा श्लोक है, पांचवां श्लोक, शंकराचार्य ने सबका खंडन कर दिया है, सबका खंडन कर दिया पांचवें श्लोक में। त्रयी वेद्यम हृद्यम, हृद्यम माने हृदय को अति प्रिय, हृद्यम, और हृदय का दूसरा अर्थ होता है हृदय गम्यम, हृदय में अनुभव में आते हैं, हृदय के द्वारा ही, हृदय में ही वह अभिव्यक्त होते हैं। शिव की जो चेतनता है वो हृदय में अभिव्यक्त होता है, शिव की जो आनंदता है वो हृदय में ही अभिव्यक्त होगा, इसलिए उसको कहा हृदयम। त्रिपुरहरम,
तीन पुर को हरण करने वाले। त्रयी वेद्यम का अर्थ कर दिया ज्ञान शक्ति प्रधान शिव, हृद्यम का अर्थ कर दिया है इच्छा शक्ति प्रधान शिव, और त्रिपुर हरम इससे कह दिया क्रिया शक्ति प्रधान शिव। एक ही शिव में ये तीनों शक्ति विद्यमान है, ज्ञान इच्छा और क्रिया। त्रिपुर हरम, तीन पुर को हरण करने की क्षमता केवल आप में है, आपके अलावा दूसरे में नहीं है। भगवान शिव का नाम क्या है? त्रिपुरा हरा। और तीन पुर को हरने का क्षमता शिव में कैसे है और में कैसे नहीं है? क्योंकि त्रिपुरासुर को नाश करने की क्षमता और किसी में नहीं दिखी है। पुराण आदि इतिहास पढ़ लो, त्रिपुरासुर को किसने मारा? शिवजी ने। और कोई मारने में असमर्थ हुए, कोई नहीं मार पाए। जब शिवजी से प्रार्थना की गई तो भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को नाश कर दिया। शिव ने त्रिपुरासुर को कैसे नाश किया? क्योंकि शिव ज्ञान स्वरूप है, ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर। शिव तो ब्रह्म विद्या रूप है, ज्ञान स्वरूप है। विद्यैव तन्नास विदौ बड़ी ऐसे न कर्म तज्जम सविरोध वीरितम। कारण शरीर को नाश करने की क्षमता किसमें है? विद्या में है, ब्रह्म विद्या में। और वो ब्रह्म विद्या किसका स्वरूप है? भगवान शिव का स्वरूप है। औपनिषद पुरुष कौन है? शिव है। और औपनिषद जो ज्ञान है वही कारण शरीर को नाश करने में समर्थ है। इसीलिए कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये तीन शरीर ही हमारा त्रिपुरासुर का स्वरूप है। तीन शरीर में इस समय हम स्थूल शरीर में विचरण कर रहे हैं, रात को सूक्ष्म शरीर में विचरण करेंगे, फिर और गहरी रात में कारण शरीर में विचरण करेंगे, और फिर सुबह होते हुए स्थूल शरीर में। त्रिपुरासुर की कहानी क्या है? ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगी कि मेरी मृत्यु कभी न हो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृतत्व की प्राप्ति तो विद्या से ही, ब्रह्म विद्या से संभव है, वो ज्ञान से संभव है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। किसी के वरदान देने से कोई अमर नहीं होगा। हाँ, अमृतत्व की प्राप्ति तो ज्ञान से होती है। तो कोई और मृत्यु मार्ग, कोई और निमित्त मार्ग, यदि कभी मरना न पड़े ये चाहता है तो आत्मानंद गिरी के चरण में जा, है सदगुरु के पास जाओ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध पराम शांतिम अचरेण तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। यदि तुम कभी मरना न पड़े ये चाहता है तो जा तत्वदर्शी किसी ज्ञानी के पास प्रणिपात होकर जाओ। ये तपस्या तपस्या करने से मिलने वाला नहीं है। यदि तपस्या ही करनी है तो यस्य ज्ञानमयम् तपः, वेदांत विचार रूपी तपस्या कर, तब तू अमर हो पाएगा। और ऐसी तपस्या से तू अमर नहीं हो सकता है। और हमसे यदि तू चाहता है अमर होना तो वो तो नहीं मिलेगा। हाँ, निमित्त मृत्यु मांगेगा तो हम दे देंगे। बोले महाराज, निमित्त मृत्यु का मतलब क्या होता है? उसने कहा यदि ऐसा हो तो मेरी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। इसको कहते हैं निमित्त मृत्यु। ये निमित्त बने तो मेरी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। बोले तब ऐसा करो, मुझे तीन रथ दे दो, और वो तीनों रथ एक दूसरे की विपरीत गति से भ्रमण करे, एक विपरीत स्वभाव वाला हो, विपरीत धातु से बना हो, एक ही धातु से ना बना हो, अलग अलग धातुओं से बना हो। तीन रथ दे दो
और मेरी ये गति हो कि तीन रथ में अपने मर्जी से मैं किसी भी समय में कहीं भी रथ चेंज करता रहूं, विचरण करता रहूं, घूमता रहूं। और यदि कोई व्यक्ति तीनों रथ को एक ही बार में नष्ट कर सकता है तब तो मेरी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। एक रथ को नष्ट करे मैं दूसरे रथ में बच जाऊं, दूसरा नष्ट करे तीसरे में, तीसरा नष्ट करे पहले में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दी। और यह संभव था, अभिजीत नामक मुहूर्त में तीनों रथ एक आमने सामने होते थे और भगवान शिव ने अकल्पित अप्रसिद्ध रथ तीरों के माध्यम से त्रिपुरासुर को मारा, ये पुराण की कथा है। रथक्षोणीयंता सत धृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रारकौ रथचरण पाणी सर इति दिदक्षोस्ते कोयम त्रिपुर तृण माडंबर विधि। हे शिवा, आपके लिए तो त्रिपुरासुर एक सूखे घास की तिनके के बराबर था, फिर भी आपने ये आडंबर रचना की कि पृथ्वी को रथ बनाया, विष्णु को तीर बनाया है, और ये सब के माध्यम से मारा त्रिपुरासुर को। ये आडंबर आप चाहते तो संकल्प से ही खत्म हो जाता है, फिर भी आडंबर शर्त उसने रखा था, शर्त अनुसार ही आपने उसको मारा। तब से भगवान शिव का नाम पड़ा त्रिपुरा हरा, और हम भी त्रिपुरासुर होकर बैठे हैं अभी है? हम अभी क्या हैं? त्रिपुरासुर होकर बैठे हैं। और हमारी ये आसुरी वृत्ति कब नष्ट होगी? असुर शब्द का अर्थ क्या है? आदिगुरु सर्वज्ञ भगवान शंकराचार्य जी ने गीता में असुर शब्द का व्याख्या की है, असुसु प्राणेशु इंद्रियेशु रमन्ति इति असुरः। असु शब्द का अर्थ प्राण, गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता, और प्राण शब्द का अर्थ इंद्रियां, और इंद्रिय और विषय के संयोग में जो रमण करे, हाँ, इंद्रियों से विषय ग्रहण करना ही उसको आनंद मानता हो जो, वह असुर। आप उस आम का रस पियोगे तो आनंद आएगा कि नहीं? तो असुर आप सिद्ध हो गए, बस। क्योंकि रस का और जुवा का संयोग हुआ, रस और जुवा के संयोग को तुम आनंद मान रहे हो तो तुम्हारा नाम क्या हुआ है? क्या हुआ बोलो है? क्यों डर रहे हो? असुर। और प्रवचन सुनते समय आनंद आ रहा है कि नहीं? शब्द और विषय के संयोग से आनंद आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा नाम क्या हो गया? हेलो जी, ये तो असुर। एयर कंडीशन में बैठकर प्रवचन सुन रहे हो, आनंद आ रहा है कि नहीं? तो इंद्रिय को ठंडा लग रहा है कि नहीं? क्या हुआ? असुर माने इंद्रिय, और इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण कर रहा है, उसको तुम आनंद मान रहे हो तो माने असुर। असुसु प्राणेशु इंद्रियेशु रमन्ति इति असुरा। और ये इंद्रियों से विषय के माध्यम से होने वाले आनंद की अनुभूति असुर ही करते हैं, और इस भाव से निवृत्ति कब होगी बोलो? जब ब्रह्म विद्या से कारण शरीर, वासनामय सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर तीनों रथों का नाश होगा, तब तुम्हारा आसुरी भाव से निवृत्ति होगी। तब क्या होगा? ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, तब असुर हो गए। ज्ञान से जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी, अपने पारमार्थिक स्वरूप का अनुभव होगा, तब जाकर तुम्हारे जीवात्मा के हमारे आसुर भाव से निवृत्ति होगी। वो तीन रथ का नाश करने वाला कौन? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या कौन है? साक्षात भगवान शिव ही ब्रह्म विद्या है, इसीलिए त्रिपुरा हरा। भाई इस श्लोक को पूरा कल करेंगे है? समय थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, 5:30 से 7। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவ மஹிம்னா ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ தர்மானந்த்ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: கி ஜிஸ் தன் கோ வா 10 வர்ஷ் மே பிராப்த் கர் சக்தா உஸ்கோ கஹதா ஏக் வர்ஷ் கே அந்தர் ஹி ஹோனா சாஹியே. ஜோ காம் 20 வர்ஷ் மே உஸ்கோ 10 வர்ஷ் கே அந்தர் கர்னா சாஹதா ஹை. क्योंकि हमने संसार के विषय को, पदार्थों को, धन को इतना महत्व दे दिया है कि सब कुछ छोड़कर उधर तत्परता से, स्थिरता से लग जाते हैं. वैसी स्थिरता, तत्परता भगवान के भक्ति में हो तो भगवान तत्काल दर्शन दे देते हैं. हमारी स्थिरता में ही कमी होती है. तो यहां पर बताया कि किस प्रकार से रावण ने व्यष्टि को समष्टि में विलय किया. ये जो व्यष्टि मतलब कि हमारी आंख है, आंख का तेज सूर्य का अंश है, कान में श्रवण इंद्रिय है या आकाश का अंश है, दिग देवता का अंश है. तो सारे देवताओं को जो व्यष्टि मंश है, इस व्यष्टि को समष्टि में मिलाना ही ये भक्ति है. यही भक्ति रावण ने किया. अपने आप को रावण ने सर्वात्म रूप से चिंतन किया, सीमय चिंतन किया. जैसे प्रसन्न होकर भगवान उसे तीनों लोकों का अधिपति बना दिया. फिर भी रावण को अहंकार हो गया क्योंकि मन को समर्पित नहीं किया था. यह बात आपको 12वें श्लोक में बतला रहे हैं, उच्चारण करने पहले.

0: विक्रमयत अलभ्यापाताले प्यलसचलितंगुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मूयति खल। त्वद अधिशतो कैलाशे, भगवान शंकर हमेशा कैलाश पर निवास करते हैं। कैलाशेपि त्वद अधिशतो अपि त्वत् सेवा समधिगत सारम। कैलाश पर जहां भगवान शंकर नित्य विराजमान रहते हैं, वहां पर भी त्वत् सेवा समधिगत सारम, आपकी सेवा से जिस रावण ने भुजवनम 20 भुजाओं का एक वन प्राप्त किया, बलात् मल्लय की अत्यंत बहादुरी के साथ विक्रमयत मतलब कि उस कैलाश पर्वत को अजमाने लगा, अमुष्य उस रावण को त्वयी मतलब आपके अलस चलित अंगूठ सिरसी, आप जरा सा अलसाए हुए अंगूठे से दबा दिए। इसके बाद क्या हुआ, पाताले अपि प्रतिष्ठा, पाताल में भी प्रतिष्ठा मतलब टिकाऊ अलभ्या नहीं मिला। आसित खल उपचित ध्रुवम मुयति, जो खल है वह समृद्ध होने के बाद अवश्य ध्रुवमल अवश्य मुयति उपकारी को भूल जाता है। तो इस श्लोक में रावण के विषय में बतला दिया किस प्रकार रावण मुग्ध हो गया। व्यवहारिक जीवन में भी जब मनुष्य को ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है तो वह मुग्ध हो जाता है, माता पिता गुरु का भी तिरस्कार कर देता है। जिसके द्वारा लालित पालित हुआ, शिक्षित हुआ, इतना बड़े उच्च पद को प्राप्त किया, पर अहंकार ऐसा है ना कि अंधा बना देता है। इसी बात के श्लोक में बताया कि भगवान शंकर कैलाश पर निवास करते हैं, मां भगवती पार्वती बाजू में बैठी हुई हैं। रावण पहुंचा, पहुंचने के बाद सोचा कि अब सारे दुनिया में कोई भी मेरे से लड़ने को तैयार नहीं, जरा चल के एक बार भगवान शंकर को अजमा लें। तो वहां जाकर जैसे ही हिमालय को वो सोचा कि जरा देखता हूं कितना इसमें बल है, उधर पार्वती जी बाजू में बैठी थी। जब रावण ने उठाना चाहा कैलाश पर्वत को तो जरा कंपन हुआ, कंपन होती पार्वती जी तुरंत भगवान शंकर को पकड़ ली। पार्वती जी ने कहा ये क्या हो रहा है, इतना भूकंप आ रहा है या कोई ज्वालामुखी फट रहा है, अचानक ये क्या हो रहा, आप यहीं बैठे हैं और ये दूसरा कौन संहार कर रहा, संहार के देवता आप है, आपसे भी कोई बड़ा देवता तो नहीं बन गया जो कि इस हिमालय के ऊपर जो है आपका कैलाश उसको भी उठाना चाह रहा है। भगवान शंकर समझ गए, मुस्कुराए, बोले कि वही जो तेरा चेला है ना रावण, रावण जो है जरा अपने बल को अजमा रहा। परंतु भगवान की अंगूठा हिलाते ही बेचारा पाताल लोक पहुंच गया, वहां भी उसको कोई शरण नहीं दिया। तो देखिए कैलाश शब्द का अर्थ यदि विचार करें शब्द के ऊपर, कई गई शब्दे है, शब्दे मतलब शब्द अर्थ में धातु है, कई गई शब्दे धातु है, कई शब्द गई शब्द शब्द अर्थ में ये धातु का प्रयोग होता है। और लास शब्द का अर्थ होता है रलयोर अभेद, रकार लकार का भेद होता है। तो रास रस एव रास, श्रुति कहती है रसो वैश, रस परमात्मा है जो ब्रह्मानंद है। तो रस एव रास, तो कैलाशे का अर्थ है ब्रह्मानंदे। जैसे उपनिषद में ब्रह्मलोक शब्द आता है तो भगवान शंकराचार्य व्याख्यान करते ब्रह्म लोक ब्रह्म लोक, ब्रह्म अलग लोक अलग दो चीज नहीं बल्कि ब्रह्म वही लोक है। यहां पर भी कैलाशे का अर्थ है जो औपनिषद प्रतिपाद्य जो ब्रह्मानंद, उसी का नाम है कैलाश। उसी ब्रह्मानंद में भगवान शंकर हमेशा रमण करते हैं या तद्रूप है। कैलाश शब्द की बड़ी भारी महिमा है, जहां पर कैलाश वहां पर भगवान शंकर अपने आप विराजमान होते हैं। ऋषिकेश कैलाश की भी ऐसी ही कुछ घटना है, बहुत कम लोगों को मालूम होगी। कैलाश आश्रम के आदि महाराज जिनका नाम था धनराज गिरी जी महाराज, करीब 150 वर्ष पुरानी घटना होगी। तो आदि महाराज उस समय पर्ण कुटियां बनाकर रहते थे, स्वाध्याय करवाते थे वेदांत का। उन्हें रात में दो बार तीन बार सपना हुआ। सपना में महादेव ने संकेत दिया, वह संकेत था हरिद्वार के सेठ भारामल बगीची, कनखल के अंतर्गत पड़ता है। हरिद्वार में कनखल एक क्षेत्र का नाम है। कनखल में भारामल सेठ की बगीची थी, उस बगीची का दृश्य था सपने में। और भगवान बार बार कह रहे थे कि तुम मुझे यहां से उठा ले जाओ, क्योंकि गंगा के प्रवाह से ये मेरा लिंग बहने वाला है। एक बार, दो बार, तीन बार सपना हुआ, ध्यान नहीं दिए, बोले सपना ऐसे होता रहता है। जब बार बार हुआ तो आदि महाराज धनराज गिरी ने सपने में ही कहा कि देखिए महादेव, मैं तो हूं विरक्त सन्यासी और मैं आपको ले आकर के स्थापना कर दूंगा। आप कौन, आपकी आरती पूजा करेगा कौन, भोग लगाएगा, ये कहां से इतनी व्यवस्था होगी। भगवान शंकर ने स्वप्न में ही निर्देश दिया कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम मुझे ले जाकर स्थापना कर दो, केवल वेदांत सुनाना और सारी व्यवस्था का भार मेरे ऊपर छोड़ दो। जब भगवान शंकर ने ऐसा आश्वासन दिया स्वप्न में, तो जैसा स्वप्न हुआ था वैसे ही 10-12 महात्माओं को लेकर के धनराज गिरिज महाराज पैदल चल पड़े। उस समय इतने साधन नहीं थे और पैदल चल करके ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंचे, करीब 24 किलोमीटर है। और आकर देखते हैं सपना के आधार पर तो वही भारामल के बगीची में गंगा जी के प्रवाह से वह पूरा जो मंदिर था गिर चुका था और शिव पिंडी के पास से गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। विधि विधान से स्वस्ति वाचन करते हुए अपने कंधे को उठा करके आदि महाराज महादेव को ले जाकर ऋषिकेश में जहां कैलाश आश्रम स्थापित कर दिया। उनका नाम रखा अभिनव चंद्रेश्वर महादेव। जब किसी मंदिर में भगवान शिव की प्रतिष्ठा होती है या राम की किसी देवता की, तो नाम संस्कार करना पड़ता है। तो उनका नाम रखा अभिनव चंद्रेश्वर महादेव। और आदि महाराज का नियम था कि उन्हें हर दिन जो है वेदांत श्रवण कराना। वेदांत श्रवण कराते थे और महादेव की जिम्मेदारी बन गई थी सारी व्यवस्था संभालना। यह आज भी कैलाश की विशेषता है। आप जाकर प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि कैलाश आश्रम में कम से कम 100 महात्मा अंदर रहते हैं और इससे ज्यादा बाहर से महात्मा आते हैं। हमेशा वेदांत का स्वाध्याय चलता रहता है और उसी महादेव का ऐसी प्रताप है, उस संस्थान से बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। अभी डालमिया जी 3-4 रोज पहले मिले थे, बोल रहे थे कि कैलाश आश्रम सन्यासियों की, विद्वानों की फैक्ट्री है। जैसे फैक्ट्री माल निकलता है ना, अब आप देख लो चिन्मयान जी महाराज भी कैलाश के आचार्य जो तपोवन स्वामी थे उनसे वेदांत अध्ययन किए थे। विवेकानंद जी तो साक्षात आदि महाराज से वेदांत का श्रवण किए थे। जितने ही बड़े बड़े महापुरुष इस जमाने के हैं, अक्सर प्रायः जरूर वहां साक्षात या परंपरा से जरूर ही जुड़े होंगे। उसी परंपरा में स्वनाम धन्य पंचम पीठाचार्य प्रेमपुरी जी महाराज हुए हैं और जो कैलाश आश्रम में बिल्कुल हिमालय की गोदी में है, वहीं से दिव्य ज्योति आपकी बंबई में आई। और बंबई में उन्होंने ऐसा कल्प वृक्ष लगाया जिसके नीचे श्रोता वक्ता दोनों बैठ करके वेदांत का स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रेमपुरी जी महाराज की हम लोगों पर कृपा आशीर्वाद वरदान है। कल्पना कीजिए, यह यदि वेदांत कलत्तरु नहीं होता तो हम लोग यहां पर इसका लाभ उठा नहीं पाते। संसार में सब कुछ सुलभ है। भगवान शंकराचार्य के वचनों में पर तीन वस्तु अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मोक्षुत्व और महापुरुषों की संगति। परंतु इन तीन दुर्लभ चीजों को प्रेमपुरी महाराज जी ने यहां पर इस संस्थान के द्वारा सुलभ बना दिया। यहां के कार्यकर्ता ही बड़े धन्य हैं जो इस प्रकार से समुचित व्यवस्था करते हुए श्रोताओं का ध्यान रखते हैं। तो देखो, कैलाश का अर्थ है कि जहां पर हमेशा वेदांत का श्रवण चले। ये केवल मात्र हमारे बुद्धि की व्युत्पत्ति नहीं है, ये शास्त्रीय व्युत्पत्ति बता रहा हूं। कही गई व्याकरण का शब्द है और रसो वैसा उपनिषद कहती है, रस एव राष्ट्र। तो कैलाशे कार्यता जहां पर अहर्निश वेदांत का स्वाध्याय चिंतन होता उपनिषद का, उसको कैलाश कहते हैं। और वहां पर भगवान शंकर सूक्ष्म रूप से अवश्य विराजमान रहते हैं। परंतु ये जो रावण था, रावण ने क्या भूल कर दिया कि 10 सिर को तो समर्पित किया था पर मन को समर्पित नहीं किया था, इसीलिए ध्रुवम उपचितो मुह्यति खल। रावण जो है ना उपचित मतलब की समृद्धि प्राप्त करने के बाद मुग्ध हो गया, मुग्ध होने के बाद भगवान ने उसको भी दंडित किया। इधर पुलस्त्य जो रावण की पूर्वज हैं, वे भगवान शंकर के पास आए, बोले महादेव आप इसके अपराध को क्षमा करें, ये महामूर्ख, इसको पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। जब पुलस्त्य ऋषि आ करके भगवान से प्रार्थना किए, तब जाकर रावण का फिर उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। यहां पर देखिए इस श्लोक का तात्पर्य इतने में है कि ध्रुवम उपचितो मुयति खल, इसका तात्पर्य है, श्लोक का हृदय है। व्यवहारिक जीवन में भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो नेता होते हैं वे चुनाव के पहले सवर्णों की निंदा करेंगे, ब्राह्मणों की निंदा करेंगे, परंतु जब घर में पूजा पाठ कराना हो या चुनाव में जीतने के लिए पूजा पाठ कराना हो तो किससे कराएंगे? ब्राह्मण से कराएंगे, भंगी से कराएंगे? ब्राह्मण से ही कराएंगे। एक तरफ तो चुनाव में जीतने के लिए ब्राह्मण से पूजा पाठ कराएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे जब सभा में तो वोट बैंक के लिए उसी की निंदा करेंगे। ऐसे ही जब नौकरी देना हो ना ब्राह्मण को, सवर्ण को, ब्राह्मण क्षत्रिय को, तो बोलेंगे महाराज ये तो स्वयं विकसित है, हमें जो है ना देना है आरक्षित को नौकरी, पर बीमार पड़ेंगे तो, जब बीमार पड़ेंगे तो आरक्षित डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे, बढ़िया डॉक्टर खोजेंगे जो बहुत कुशल हो, उस समय आरक्षित डॉक्टर से जाएंगे नहीं जानबूझ करके भी, ये तो आरक्षण के बल पर नौकरी प्राप्त किया है। मान लो अपना बढ़िया बिल्डिंग मकान दुकान बनाना हो तो आप आरक्षित इंजीनियर के पास नहीं जाएंगे, बल्कि जो बढ़िया कुशल हो उससे मकान बनवाएंगे। पर सरकारी काम करवाना हो, नौकरी लगवाना हो तो कोई भी आरक्षण वाला चाहिए। तो जो जिससे लाभ प्राप्त करके और ठुकरा दे उसको खल कहते हैं। खल की परिभाषा यही है कि जिससे लाभ तो प्राप्त कर ले, फायदा उठा दे और बाद में उसी को हानि पहुंचाए, उसका नाम है खल। तो जो ऐसे खल हैं वे खल हमेशा जो है तिरस्कार करते हैं, पर उनका कभी उद्धार नहीं होता है। इस 12वें श्लोक में पुष्पदंताचार्य जी ने बताया। अब आपको हम द्वापर में ले जाते हैं क्योंकि जल्दी पूरा करना है ना। द्वापर में देखिए किस प्रकार से भगवान शंकर की उपासना किसने किया, पहले उच्चारण कर लें।
1: यद्रिदिम सूत्राम्लो वरद परमोचैरपिशति मधचक्रे बाण परिजन विधेयस्त्रिभुवन न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयो न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसाह्यै यवनति।
0: द्वापर में सुत्राम्णो वरद, यहां वरद भगवान शंकर का संबोधन है। हे वरद, बरमल श्रेष्ठ, वरम श्रेष्ठम ददात इति वरद, सर्वश्रेष्ठ है आत्मज्ञान, सबसे श्रेष्ठ धन है आत्मधन, इसके बाद फिर आपका शरीर है, द्रव्य सब बाद के हैं। तो जो आत्मज्ञान को देने वाले हैं ऐसे भगवान शंकर को वरद से संबोधन किया। परिजन विधेयस त्रिभुवन, आप परिजन का अर्थ होता है परिवार, मतलब कि बाणासुर ने आपको प्रसन्न करके तीनों लोगों को दास की तरह से अधीन बना लिया। बाणा मतलब बाणासुर, परमोच्चय सतिम, परमोच्चय का अर्थ सबसे बड़े चले श्रेष्ठ, सुत्राम्ल मतलब इंद्र, इंद्र का नाम एक सुत्राम्ल है, रिद्धि मल्ल ऐश्वर्य को अपि मल्ल भी
1: यता मल्ल जो आधा मल्ल के नीचे कर दिया अभिभूत कर दिया चक्रे
0: तता मल्ल वह त्वत चरणयो आपके चरणों की वरी वशीतरी का अर्थ है कि सेवा पूजा का ही प्रताप है तस्मिन चित्रम इसमें कोई आश्चर्य नहीं। त्वयी शिरसी शिरसा अवनति आपके चरणों में जो सिर का झुकना है वह कस्से उन्नते न भवती किसके उन्नति के लिए विकास के लिए नहीं होता है अर्थात सबके उन्नति का कारण बन जाता है। ये जो बाणासुर है बाणासुर भगवान शंकर को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके पूरे संसार को परिजन बना लिया मतलब कुटुंब परिवार के समान। इंद्र को लोग मानते हैं प्रणाम करते आदर्श जो करते हैं वह डंडे के भय से करते हैं परंतु बाणासुर ने अश्वमेध याग नहीं किया। इंद्रासन पाने के लिए 100 अश्वमेध याग करना पड़ता है इसके बाद आप इंद्रासन को प्राप्त कर सकते हैं परंतु बाणासुर ने अश्वमेध याग भी नहीं किया केवल मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाता और बना करके फूल पत्ती से पूजा करता पूजा करने के बाद नर्मदा जी में उसको भी बहा विसर्जन कर देता। इस प्रकार से बाणासुर हर दिन मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाए बनाकर पूजा कर विसर्जित करता था। इस पूजा से भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए उसको मुंह मांगा वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद उसने पूरे संसार को परिजन मतलब परिवार के समान देखिए परिजन में और प्रजा में अंतर है। परिजन बोलते परिवार को परिवार आपका आदर सम्मान न श्रद्धा से करता है हृदय से करता है पर नौकर आपकी बात मानता है डंडे से। नौकर में बच्चा मानता है लोग कहते हैं ना कि नौकर तो हमारी बात मानता है आज्ञा मानता सम्मान करता नमस्कार करता है पर बच्चे नहीं करते हैं लोग शिकार करते। नौकर तो डंडे के भय से करता है उसको मालूम है नहीं करूंगा तो मालिक हटा देगा या तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा इस भय से करता है परंतु आपके बच्चे को न तनख्वाह का लोभ है न डंडे का भय है। तो बाणासुर ने इस प्रकार से संसार को अपने अनुकूल बना लिया सभी उसके अनुकूल बन गए जैसे कोई परिवार होता हो। न तच्चित्रम इसमें किसी प्रकार का वैचित्र नहीं है तो भगवान की उपासना से अलभ्य भी लभ्य हो जाता है जो वस्तु दुर्लभ वह भी सुलभ हो जाती है। इस प्रकार से यहां पर पुष्पदंताचार्य बदला रहे हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में जैसे भी हो आपका कोई उपासना करे चाहे जान कर करे चाहे जान के करे आप उस उपासना से श्रेष्ठ वरदान को देते हैं। भस्मासुर का प्रसंग भी आगे आता है कि भस्मासुर भी भगवान शंकर को प्रसन्न किया परंतु भस्मासुर रावण की तरह से स्वयं ही पार्वती जी को पाने के लिए भगवान शंकर की तरफ दौड़ा कि यदि हम भगवान शंकर को भस्म कर दिए तो पार्वती उपलब्ध हो जाएगी जगत का गुरु बन जाऊंगा परंतु होगा विपरीत उसका इनाश हुआ। तो यहां पर जो ध्रुव मतलब निश्चित खला मतलब दुष्ट जो कृतज्ञ है जिससे लाभ प्राप्त करता है उसका तिरस्कार करता है उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता कल्याण नहीं हो सकता। यहां दोनों बार बतला दिया यदि आप किसी की उपासना से कुछ प्राप्त किए हैं प्राप्त करने के बाद कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करेंगे जैसा कि मनु संविधान है मनु महाराज कहते हैं कीर्तम प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनम। यदि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो उसके पर जब कृतज्ञता ज्ञापन करे सनातन धर्म है। यदि आप कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करके यदि आप कहें कि मैंने किया इसने क्या किया तो अहंकार होगा। अहंकार मतलब कि हमारे उपासना से हमारे तपस्या से सब कुछ प्राप्त हुआ। एक तपस्वी थे हिमालय बहुत तपस्या किया तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रसन्न होकर वरदान देने आए। वरदान देने आए तो तपस्वी ने वरदान में मांगा कि आप हमें अमर बना दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि इस शरीर से अमर नहीं हो सकते हो, मरने के बाद तुम्हें अमरता मिल जाएगी। अमर ये अहंकारी आदमी जो तपस्या करता है अमरता पाने के लिए, तो जब भगवान शंकर ने कहा कि अमरता स शरीर कोई हो नहीं सकता, फिर ऋषि तपस्वी ने कहा कि आप हमें इतना ऐश्वर्य दीजिए कि मांगने वाले को मैं कभी इनकार न कर सकूं। भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान के पास क्या कमी। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रहा, पर धीरे धीरे काल बीतता गया, उसको अहंकार हो गया कि मैंने बड़ी तपस्या की, तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न किया, वरदान में भगवान से हमने अमरता मांगी। पर भगवान ने कहा कि मरने के बाद तुम अमर हो जाओगे और जीते जी अमरता नहीं मिल सकती है, तो हमें ऐश्वर्य प्रदान किया। तपस्वी को अहंकार हुआ कि हमारे तपस्या से ऐश्वर्य मिला, भगवान शंकर ने फोकट में तो दिया नहीं, जो भी कुछ दिया तपस्या से। तो यही अहंकार आदमी को जो है ना भटकाता है, तपस्या करना बुरा नहीं, पर तपस्या का अहंकार अभिमान होना बुरा है। इतना अभिमान हो गया कि जो है दीननाथ अपनी तपस्या का बखान करते रहा। भगवान शंकर ने सोचा बेचारा बहुत तपस्या किया और अहंकार होने के बाद पतन हो जाएगा, और हमने जो वरदान दिया अमरता का विफल हो जाएगा, इसलिए इसको सावधान करना चाहिए। भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश बनाकर उस तपस्वी के पास आते हैं और बोलते हैं भिक्षा मह्यम देही, मुझे भिक्षा प्रदान करो। हाथ उठा के बोला कि आपको जो चाहिए सो मांग लो। बोले कि पहले तुम वचन दो, ऐसे हम नहीं मांगने वाले, हमने मांग लिया तुमने ना कर दिया तो हमारा वचन खाली जाएगा, इसलिए तुम तीन बार पहले संकल्प पढ़ो कि मैं अवश्य दूंगा। उन्होंने कहा कि तीन बार नहीं 13 बार संकल्प पढ़वा लो, मैं सबको देने में समर्थ। अभिमानी विचार नहीं करता है, बस संकल्प पढ़ लिया। पांचों ब्राह्मणों ने कहा कि देखो हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण को लोभ नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है, इसीलिए हम आपसे धन नहीं मांगेंगे, धन मांगने से अहंकार हो जाएगा, हम भोग ऐश्वर्य में पड़ जाएंगे, भिक्षा से हमारा काम चल जाता है, आप हमें अपने तपस्या का एक भाग दे दो। उसने कहा ले लो, हमने बहुत तपस्या किया, 1 वर्ष की तपस्या का भाग आपको देता हूं। पांचों ब्राह्मणों ने कहा कि हमें तो बस तपस्या का अंश ही चाहिए। वह घबराया, बोला पांचों को अंश दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, बहुत चिंतित हुआ। ब्राह्मणों ने कहा देखो हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, पहले हमारा नाम सुन लो। ये जो सबसे आगे है इनका नाम है आकाश देव, ये आकाश के हिमानी देवता है। दूसरे हैं मरुद देव, वायु का हिमानी देवता, और तीसरे जो ब्राह्मण है ये आपके अग्नि देव है, अग्नि के हिमानी देवता, और चौथे ब्राह्मण साक्षात वरुण देव, जल के हिमानी देवता है, और पांचवा जो मैं हूं पूषा देवी। ये हम पांचों ब्राह्मण बन के आपके पास आए हैं क्योंकि आपने बड़ी भारी तपस्या की है, आपके तपश्चर्या के महिमा को सुनकर आए तपस्या के भाव को मांगने के लिए। तपस्वी तो घबराया, उन्होंने तर्क दिया कि तुमने हमारे अंश से बैठ के तपस्या की, जल देवता ने कहा कि तुमने हमारे जल को पी के तपस्या किया, मरुद देव ने कहा कि तुमने हमारे हवा को ऑक्सीजन को लेकर तपस्या किया, आकाश ने कहा कि जहां तुम बैठे थे ना चारों तरफ हमारा ही अंश था, इसलिए हमारा मौलिक अधिकार है तपस्या में। अब तो तपस्वी और घबराया, अब तो देना ही पड़ेगा। उसे बात समझ में आ गई, चरणों में गिर पड़ा, बोला अपराध क्षमा करें, मुझे बात समझ में आ गई। तो जो तपस्या है, तपस्या करना अच्छी बात है, पर अहिमान हो जाता है तो आदमी अपने इष्ट का भी तिरस्कार कर देता है। परंतु यदि हम जीवन में परमात्मा को आश्रय देंगे तो फिर भगवान रक्षा करते हैं, भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। तो यहां पर कह दिया कि न तच्चित्रम तस्मिन वरी वशीतरी त्वच्चरणयो, आपके चरणों की उपासना करने वाले सब कुछ प्राप्त कर लेते, यहां तक कि मौत को भी जीत लेते हैं। कलयुग में मार्कंडेय ऋषि हुए, मृकंडू के पुत्र, उनकी आयु केवल 8 वर्ष की थी। उनके पिता ने बता दिया कि बेटा तेरी आयु केवल 8 वर्ष की है। जब मृत्यु का समय आया केवल 3 दिन बाकी रहे, पिता ये बहुत उदास हो गए। मार्कंडे ने पूछा कि आप इतना उदास क्यों हैं? पिता ने सारी बात बता दी। मार्कंडे जी महामृत्युंजय का मंत्र जपते हुए भगवान शिव की शरणागत हो गए। बोले कि आप सबको देने में समर्थ है, आपने आयु यदि आपने जन्म दिया है तो आप हमको अमर ही बना सकते हैं। समयानुसार यमराज आए। जैसे यमराज आकर के अपना यमपाश फेंकते हैं, तत्काल भगवान शंकर का विभाव हो जाता है। भगवान शंकर ने यमराज से कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो महामृत्युंजय का जप करता है उसको तुम यमपाश से बांध नहीं सकते। यमराज चरणों में गिर गए। बोले कि महाराज नियम भी तो आपने ही बनाया है ना, आपने ही आयु दी, आपने ही 8 वर्ष की आयु का विधान किया और आपने मुझे यमपद पर बिठाया, तो मैं तो आपके ही काम को पूरा करने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा कि सो ठीक है, परंतु जो महामृत्युंजय का जप करता है तुम उसको यमपाश से बांध नहीं सकते। भगवान शंकर ने मार्कंडे को अमर चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तो न कस्या उन्नति भवति शिरसस्पै अवनति, भगवान के चरणों में सिर झुकाने पर किसी की भी अवन्नति नहीं होती है। अवन्नति मतलब कि पतन नहीं होता है। हम संसार में जब सिर झुकाते हैं तो कामना सवार होती है और कामना सवार होकर संसार में भटकाती है, पर यही सिर जब भगवान के चरणों में झुकता है तो फिर हमारा हमेशा के लिए कल्याण हो जाता है। अब समय पूरा हुआ, यहीं विराम लेते हैं। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: प्रमाणो प्रमोष प्रमोषणम प्रमात्रीणम मायया तमसा कृतम। प्रमात्री का जो स्मरण या अनुभव न हो पाने में मायया तमसावृतम, माया का जो तमांश है उसके द्वारा जिस समय प्रमाता आवृत हो जाता है, ध्यान देना, प्रमाता जब तम से युक्त हुआ हुआ माया या माया का जो तमोंश है उसके द्वारा वह प्रमाता आवृत हो जाता है, तब व्यक्ति ये कह देते हैं कि प्रमाता का भान नहीं हो रहा है। जैसे मूर्छा में, जैसे सुषुप्ति में या मरण में प्रमाता का भान नहीं होता है। प्रमाता का भान न होने में कारण क्या है? तो बोले माया में जो तमो अंश है उसके द्वारा आवृत होता है। और पदार्थ आवृत्ति हो जाना ये पदार्थ का नाश नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि माया के दो भेद हैं। माया विद्ये प्रभो शक्ति, माया और अविद्या है। माया विद्ये प्रभो शक्ति भानोच्छाया प्रभो प्रभोपमे। विद्या और माया, माया और विद्या, ये दो परमात्मा की शक्ति है। विद्या प्रकाश की तरह है और माया छाया की तरह है, ये देख लो। अब जबकि जो छाया है वो प्रकाश के बिना सिद्ध नहीं होता। जिसको हम छाया कह रहे हैं वह प्रकाश का ही अवांतर स्वरूप है, क्योंकि यदि बिल्कुल प्रकाश न हो तो कहीं किसी की छाया नहीं होती है। छाया है लेकिन प्रकाश का ही है वह छाया। छाया होने पर भी छाया में पदार्थ स्पष्ट नहीं होता है, प्रकाश में पदार्थ स्पष्ट, यानी प्रकाश प्रखर स्पष्ट दिखता है, छाया स्पष्ट नहीं दिखता है, जबकि ये दोनों ही प्रकाश के स्वरूप हैं। इसी तरह माया और विद्या ये परमात्मा की शक्ति है। विद्या प्रखर प्रकाश की तरह है, माया उस प्रकाश के अंतर्गत की छाया की तरह है। और इसीलिए छाया में पदार्थ भान स्पष्ट भान नहीं होता, लेकिन छाया भी प्रकाश का ही अंग है, प्रकाश के द्वारा ही दृष्ट है। छाया प्रकाश नहीं है तो क्या, छाया यदि प्रकाश न होती तो क्या वो दिखता? जो प्रकाश नहीं है वो दिखता नहीं है। और छाया प्रकाश का विरोधी है या प्रकाश छाया का विरोधी है मानेंगे तो फिर छाया दिखेगा नहीं। और प्रकाश होता है तभी छाया होती है, प्रकाश नहीं है तो छाया नहीं है। इसी तरह ये विद्या और माया ये परमात्मा की ही शक्ति है। भानोच्छाया प्रभो प्रभोपमे, जैसे सूर्य और सूर्य के द्वारा प्रकाश से दिखाई पड़ने वाला छाया, जैसे सूर्य प्रकाश आएंगे, पेड़ को उसने प्रकाशित किया, सूर्य के प्रकाश ने पेड़ को प्रकाशित किया, और उसी प्रकाश ने, जिस प्रकाश ने पेड़ को प्रकाशित किया उसने छाया तैयार कर दिया, उस पेड़ की छाया तैयार कर दी, और वो तैयार हुए हुए छाया को भी वही प्रकाश प्रकाशित कर रहा है। देखो पेड़ को प्रकाशित करने वाला जो भानु का सूर्य का प्रकाश है वही प्रकाश पेड़ के छाया को भी तैयार कर रहा है, छाया को भी बना रहा है, और उस बने हुए छाया को अपने प्रकाश से तैयार हुए हुए उस छाया को वो खुद भी प्रकाशित करता है। फिर भी छाया में व्यक्ति के क्या कहते हैं, छाया में प्रकाश नहीं है और पेड़ में प्रकाश है, ये कह देते हैं। पेड़ में तो सूर्य का प्रकाश पड़ा हुआ है, बोले छाया में प्रकाश है कि नहीं, बोले छाया में सूर्य का किरण नहीं पड़ा है, जबकि वो प्रकाशित हो रहा है उसी सूर्य के किरण से। सर्वान्नाच्छादयन माया, सभी पदार्थों को आच्छादित करने वाली शक्ति का नाम, परमात्मा की शक्ति का नाम माया है, सारे पदार्थों को आच्छादित करने वाली। सर्वान्नाच्छादयन माया विद्या व्याक्षिप्य दर्शये, एक ही परमात्मा की जो दो शक्ति है माया और विद्या, दोनों में ऐसा संघर्ष चलता है, दोनों में। माया सभी पदार्थों को आच्छादित करके ढक देती है और विद्या उसके आवरणों को, उस माया के द्वारा ढके हुए को, माया को सब फेंक देती है। हाँ, और जब माया को मौका मिलता है तो पदार्थों को ढक देती है, जब विद्या को मौका मिलता है तो उसको उखाड़ फेंक देती है, जब माया को मौका मिलता है तो ढक देती है, जब विद्या को अवसर प्राप्त होता है तो उखाड़ के फेंक देता है। तो विद्या और माया दोनों परमात्मा की शक्ति है, ये शक्ति दोनों इस तरह खेलते हैं कि एक कभी पदार्थों को आवृत्त कर देता है तो कहता है कि पदार्थ प्रमोषित हो गए, यानी दिखाई नहीं पड़ रहा है, पदार्थ का मुझे भान नहीं है, हाँ? कहने लग जाते हैं मैं उसको नहीं जानता। क्यों नहीं जानते हो? तो आच्छादन कर दिया, परमात्मा की शक्ति से वो आच्छादित हो गया, इसलिए नहीं जानते हो। फिर कैसे जानोगे? उसी परमात्मा की शक्ति जो विद्या है उसका प्रयोग करो, तो फिर जब वो विद्या शक्ति सामने आ जाती है तो फिर वह माया के आवरण को हटा देती है। सर्वान्नाच्छादयन माया विद्या व्याक्षिप्य दर्शयेत् प्रत्यभिज्ञैव सर्वेषां प्रमाणान्नाञ्च साधनम्। तो अंदर ये निष्कर्ष निकाला गया कि सभी प्रमाणों का मूल साधन ही है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा से ही वह विद्या की उत्पत्ति होती है, प्रत्यभिज्ञा ही विद्या के उत्पत्ति में हेतु है, और प्रतिविज्ञा रूप जो विद्या है वही माया का व्यावर्तक है और पदार्थ का प्रकाशक है। ईश्वरोन्यो अहम अन्यः, ये माया का आवरण किस प्रकार से होता है ये दिखा रहे हैं। ईश्वरो अन्य अहम अन्य, ईश्वर मेरे से भिन्न है, मैं ईश्वर से भिन्न हूं। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, मैं अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान हूं। ईश्वर नित्य है, जन्म मृत्यु रहित है, और मैं अनित्य हूं, जन्मने वाला और मरने वाला हूं। ये जो भान हो रहा है यह माया का आवरण है, यही माया के द्वारा आवृत होना, आच्छादित होना, माया के द्वारा ढक जाना, यही है। वो न अपने यथार्थ स्वरूप को जान पा रहा है, न ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जान पा रहा है, इसलिए कह रहा है कि ईश्वर अन्य है, मैं अन्य हूं। ईश्वर अन्यो अहम अन्य इति विच्छेद कारणम, यही विभेद का कारण है, विच्छेद कारण, यही विभेद है, यही भिन्नता है, ईश्वर अलग है मैं अलग हूं। व्याक्षिप्य, इस विभेद यानी भिन्न भिन्नता के बोध का जो कारण है माया का आवरण, उसको विद्या ईश्वर की ही शक्ति रूप विद्या क्या करती है, व्याक्षिप्य उसको हटाकर, विद्या व्याक्षिप्य विद्याया मायाम ईश्वरो अहम इति स्मृति। जब उसी ईश्वर की परमात्मा की शक्ति रूप विद्या के द्वारा वो भेदक, ईश्वर अलग मैं अलग ये बोध कराने वाला भेदक माया का आवरण जब व्यक्षिप्त होता है, हट जाता है, विद्या के द्वारा जब वो आवरण हट जाता है, तो हटे हुए उसके बाद वही व्यक्ति क्या कहता है, सोहम जी ईश्वरो हम। अरे मैं और ईश्वर में तो कोई अंतर ही नहीं रहा। तो भाई पहले ही अंतर नहीं था, पहले भी अंतर नहीं था। यह नहीं है कि पहले अंतर था और अब विद्या के द्वारा उस अंतर को हटा दिया गया, ऐसा नहीं है। पहले भी अंतर नहीं था, एक ही थे, फिर भी उसी ईश्वर की शक्ति जो माया शक्ति है उसके आवृत हो जाने पर यह विभेद खड़ा हो गया कि ईश्वर अलग है मैं अलग हूं। जैसे पानी और तरंग दोनों अलग नहीं है, पानी और तरंग दोनों अलग नहीं है, समुद्र और तरंग ये दोनों अलग नहीं है, पहले ही एक थे। अब बीच में थोड़ा सा हवा चल जाने के कारण, पवन के चलते तरंग अलग दिखने लगा। तो जिस समय तरंग दिखने लगता है तो उस समय में देखने वाले व्यक्ति को ये भ्रांति होता है कि पानी समुद्र अलग है और ये तरंग अलग अलग है। समुद्र अलग है, तरंग अलग है, ये भ्रांति होती है। तो तरंगों को समुद्र से अलग कर देने वाला तत्व और समुद्र को तरंग से अलग कर देने वाला विभेद तत्व, वह उस तरंग को उत्पन्न करने का कारण साधन वायु का वेग, उसके रहते हुए ये तरंग अलग अलग होंगे। लेकिन जब वेग हट जाता है, यानी वायु का वेग हट जाता है, पवन शांत हो जाता है, तब फिर वह तरंग उसी पानी में लीन होकर रह जाता है। तो बाद में जो तरंग पानी से अभिन्न हो गया तो पवन के हटने पर अभिन्न हुआ, ऐसा नहीं है। पहले भी अभिन्न था, अभी भी अभिन्न है, लेकिन वह कारण बन गया विभेद का कारण। वह हटते ही विभेद नहीं होता। इसी तरह अहम और ईश्वर, परमात्मा और मैं, ये हम पहले से ही एक हैं, अभी भी एक हैं और बाद में भी एक ही हैं, दो अलग अलग चीज नहीं है। लेकिन माया की जो शक्ति है, ईश्वर की जो माया शक्ति है, उस शक्ति के चलते ऐसा भ्रांति हो गया है कि ईश्वर अन्य अहम अन्य, ईश्वर अलग है मैं अलग हूं, ये विभेद हो गया। परंतु उसी परमात्मा की जो विद्या शक्ति जब काम करती है तो ये विभेद के जो कारण है उसको हटा देता है। तब कहता है कि अरे ईश्वर में और मुझ में तो कोई अंतर नहीं है, यही तत्वमसी है। ईश्वर अन्यो अहम अन्य इति विच्छेद कारिणम व्याक्षिप्य विद्यया माया ईश्वरोहम इति स्मृति। ईषत् प्रकाशो भूत ईशो माया यवनिकावृत सम्यक आवरणा पाये सहस्रांशोरिव स्फुरेत। जैसे सूर्य बाहर स्पष्ट प्रकाशित हो रहे हैं, कोई बादल नहीं है, एकदम प्रकाशित है, फिर भी कमरे के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति पर्दा लगा हुआ होता है तो उस पर्दे के माध्यम से जब सूर्य को देखता है तो सूर्य के उस प्रकाश का अनुभव नहीं कर पाता। ईषद प्रकाश का अनुभव तो करता है, थोड़े थोड़े प्रकाश बाहर है, सूर्य का प्रकाश बाहर है, बिल्कुल सूर्य नहीं है ऐसा नहीं कह रहा। बाहर सूर्य उदय आ गए हैं, उग आ गए हैं, सूर्य ऊपर आ गए हैं, उदय हो गए हैं, और प्रकाश भी बाहर सूर्य का प्रकाश है। पर्दे के माध्यम से जब बाहर देखता है तो उस सूर्य के पूरा प्रखर प्रकाश नहीं देखता, मंद प्रकाश देखता है, कम प्रकाश देखता है, तेज प्रकाश नहीं देखता। जब पर्दा हटा दिया जाता है तो सूर्य का पूरा प्रकाश देखता है उसको सहस्रांशु। इसी तरह माया के आवरण होने पर वो खुद अपने आप को मंद प्रकाश वाला मानता है और कहता है कि मैं अज्ञानी हूं, अल्पज्ञ हूं, अल्प शक्ति वाला हूं। वो ज्ञान को भी अल्प के रूप में अपने अनुभव कर रहा है, शक्ति को भी अल्प के रूप में देख रहा है, अनुभव कर रहा है। जैसे पर्दा हटते ही सूर्य के पूरा प्रकाश देखता है, सहस्रांशो प्रखर प्रकाश का अनुभव करता है, इसी तरह विद्या के द्वारा माया जवनिका, जवनिका पर्दा, नाटक में जवनिका शब्द प्रयोग करते हैं, पर्दा, एक पर्दा होती है, वो व्यक्ति वही है लेकिन पर्दा जब सामने आ जाता है तो वो वस्तु दिखता नहीं है। कलाकार स्टेज में बैठा है, कुर्सी में बैठा है, क्या क्या कर रहा है सब कुछ दिख रहा था जब पर्दा नहीं थी, और जब अचानक बीच में पर्दा गिर जाता है वो व्यक्ति वही होता हुआ भी दिखता नहीं है, और फिर ही वो पर्दा हट जाता है तो फिर वो दिखने लगता है, फिर पर्दा आ जाता है तो दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति गया और नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं है, वही होता हुआ भी पर्दा के कारण स्पष्ट भान नहीं हो रहा है। इसी तरह ये माया जवनिका परमात्मा और हमारे बीच में, उस परमात्मा के सर्व शक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान का अपने में होने वाला जो अनुभव है वो अनुभव को रोकता है माया जवनिका, माया के पर्दा से। इसलिए अपने में विद्यमान वो भाव अपने आप को भान नहीं होता, और जब वो हट जाता है तब फिर स्पष्ट भान होता है। ईषत् प्रकाशो बुद्ध ईशो माया जवनिकावृत सम्यक आवरणा पाये सहस्रांश।

एक और नई बात कह रहे हैं। ये प्रत्यभिज्ञा जो है या प्रमाण जितने भी हैं, ये पदार्थों को उत्पन्न नहीं करते, वस्तुओं को उत्पन्न नहीं करते। प्रत्यभिज्ञा किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता, प्रमाण किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हैं ना? फिर क्या करते हैं? तो प्रमाण और प्रत्यभिज्ञा क्या करते हैं? खाली मोह का अपसरण कर देते हैं। जितने भी प्रमाण हैं, इन सारे प्रमाणों का काम क्या है? पदार्थों को नया उत्पन्न करना नहीं, पहले से ही विद्यमान पदार्थ, उसमें एक जो मोह है, मोह शब्द का अर्थ है अज्ञान या माया, माया उपलक्षित मोह, माया उपलक्षित अज्ञान, अज्ञान उपलक्षित मोह, मोह अज्ञान माया एक समानांतर है, पर्यायवाची शब्द है ये सब। तब ये प्रमाण और प्रत्यभिज्ञा का काम क्या है? पदार्थों को उत्पन्न करना इनका काम नहीं है, नया पदार्थ बनाकर सामने रख देना इनका काम नहीं है। पहले से ही विद्यमान सिद्ध जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों में मोह का जो आवरण, अविद्या का आवरण, माया का जो आवरण पड़ा हुआ है, उस मोह का अपसरण करना यानी हटा देना इनका काम है प्रत्यभिज्ञा का। या

0: यावत व्यवहार योग्य पदार्थ का जब तक अज्ञान रहता है, वो अज्ञात रहते हैं वो पदार्थ, तब तक वह व्यवहार के योग्य नहीं हो पाते, उनके साथ हम व्यवहार नहीं कर पाते। बात समझ रहे ना? जब तक पहले से सिद्ध पदार्थ वह मोह के आवरण से यानी अज्ञान के आवरण से आवृत रहते हैं, तब तक हम उस पदार्थ को जानते नहीं और उस पदार्थ के साथ व्यवहार नहीं कर पाते। और उस व्यवहार करने के लिए क्या चाहिए? उस मोह का अज्ञान का अपसरण होना पड़ेगा, यानी हटना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए दो ही कारण, यह तो प्रमाण है या फिर प्रत्यभिज्ञा है। प्रमाण और प्रत्यभिज्ञा ज्ञान ये उस मोह का अपसरण करता है, तो पहले से ही विद्यमान पदार्थों का प्रकाशन हो जाता है, भान होता है, उसका ज्ञान हो जाता है। जब पदार्थ का ज्ञान हो जाता है तो सारा लौकिक व्यवहार भी हम करने लगते हैं। इसलिए पहले प्रश्न किया था अस्ति व्यवहार इति, अस्ति प्रकाशते इति व्यवहारो प्रवर्तते। समस्त व्यवहार में ये दो चीज होना जरूरी है, एक तो पदार्थ का होना जरूरी है, दूसरा उस पदार्थ का ज्ञान जरूरी है। पदार्थ है, पदार्थ का ज्ञान नहीं है तो व्यवहार नहीं हो पाएगा। पदार्थ का ज्ञान है, पदार्थ नहीं है तो भी व्यवहार नहीं हो पाएगा। पदार्थ भी होना चाहिए और पदार्थ का ज्ञान भी होना चाहिए। पदार्थ पहले से विद्यमान है, मोह के आवरण से ढका हुआ है, तो पदार्थ का ज्ञान नहीं है, तो पदार्थ होते हुए भी हम व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तब वो मोह अपसरण हो जाता है तो क्या होता है, पदार्थ है ही है, अब प्रकाशित भी हो गया तो सारा व्यवहार होता है। तेसा मोह अपसरणात व्यापारो अन्यो न विद्यते। जड़ानृत परिच्छिन्न देह धर्मादिश्चात्मनि। देखो आवरण कितने कितने रूप में अपने स्वरूप को आवृत किया हुआ है, या दूसरी भाषा में कहें मोह अज्ञान कितने कितने स्वरूप में अपने स्वरूप को आवृत करके बैठा हुआ है। जड़ान अनिर्ता परिच्छिन्न देह धर्मादि च, ये देखो जड़ देह अनित्य देह, अनिर्त माने अनित्य देह, नाशवान को अनिर्त कहते हैं, सत्य को नृत कहते हैं ऋत, और असत्य को मिथ्या को अनिर्त कहते हैं। जनान जड़ान अनिर्त परिच्छिन्न, और ये परिच्छिन्न है, देह धर्मादि च आत्मनि, और आत्मा कैसा है, सत्य ज्ञान सुखात्मत्व, आत्मा है सत्य रूप, ज्ञान रूप सुख रूप, और शरीर है जड़ रूप परिच्छिन्न रूप और अनात्म रूप अज्ञान रूप। वह इस आत्मा सत्य नित्य ज्ञान सुख स्वरूप आत्मा को ढक दिया है, और ढक देने के कारण ही उस सुख रूप आत्मा के साथ हमारा व्यवहार नहीं हो पा रहा है। माने सुख मुझ में ही है, अन्यत्र मुझे खोजने की जरूरत नहीं, ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अन्यत्र खोजने लग जाते हैं। नित्य मुझ में भी है, मुझ में ही है, अन्यत्र नित्यता खोजने की जरूरत नहीं, ये नहीं हो पाता है। ये आवरण इन सब रूपों में उसको आवृत किया हुआ है, उसी का नाम मोह। ये मोह के चलते मोहा देहे पी कल्प्यते, उसी मोह के चलते कहता है कि आत्मा को मैं नहीं जानता हूं, मैं देह को जानता हूं। शरीर आदि में सुख प्रतीत होता है, आत्मा में सुख है ये मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। सुक्तौ रजतमित्येवम् यथा व्यामुह्यते अन्यथा सदैव रूप्यचेत् भाति विलयस्ते न चिद्यति। जब प्रमाण के द्वारा ये सिद्ध हो जाता है कि यह सीपी है चांदी नहीं है, तब फिर वह प्रतीत होने वाला चांदी वही विलय भाव को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मैं कुटस्थ सच्चिदानंद अद्वितीय कूटस्थ हूं, ये बोध प्रतिविज्ञा के द्वारा हटते ही अपना स्वरूप अपरोक्ष होते ही ये माया हट जाएंगे, या ये माया के आवरण के हटते ही अपना स्वरूप अपरोक्ष हो जाएगा, इसी को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। न अत्यंत असत प्रकाशेत नरसृंगादिवत क्वचिद कांताकारो रजस्तिमी स्यादस्मरण ब्रमेह। ये माया कैसी है, तो माया के बारे में कहा ये अत्यंत असद भी नहीं है, मनुष्यों के सींग की तरह ये माया अत्यंत असद भी नहीं है, और यह आत्मा की तरह सत भी नहीं है। असत इसीलिए नहीं है क्योंकि ये व्यवहार हो रहा है, सत इसीलिए नहीं है कि प्रत्यभिज्ञा के द्वारा यह अपसरण हो जाता है, ये बाधित हो जाता है, इसीलिए इसको सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, और सत असत उभय रूप ये विरोधाभास होने के कारण उभय रूप भी नहीं मान सकते। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में माया का लक्षण करते हुए शंकराचार्य ने कह दिया है, सन्नाप्य सन्नाप्य वे आत्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य वे आत्मिकानो, सांगाप्य अनांगाप्य वे आत्मिकानो, महत भूता निर्वचनीय रूपाह माया। ये अनिर्वचनीय माया है, यह केवल यह माया भी परमात्मा की शक्ति है लेकिन मोहात्मिका आवरणात्मिका है, विद्या भी परमात्मा का ही शक्ति है परंतु यह माया का तिरोधान करने वाला माने अपसारण करने वाला हटाने वाला है, यही माया और विद्या का अंतर है। ये प्रतिविज्ञा का विचार चल रहा है, समय हो गया है, आगे सातवां श्लोक में महत्वपूर्ण पक्ष है, स्वात्मानं प्रकटि करोति भजताम यो मुद्रया भद्राया। ये भद्रा मुद्रा, चीन मुद्रा को भद्रा मुद्रा कहते हैं, भगवान दक्षिणामूर्ति शिव ने सनत सुंदरात को, सनत कुमारों को, जो उनकी जो मोह है माया है, भगवान शिव ने केवल इस मुद्रा के द्वारा उन माया को मोह का अपसरण कर दिया था, माया के पर्दे को हटा दिया था। वह क्या है, कैसा है, इसके बारे में कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Pusalar Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम और एक दक्षिण भारतीय संत या नायनमार की कहानी सुनेंगे जिनका नाम पूसलार है। प्रिय पुराणम में एक भक्त की कथा का वर्णन है जो शिव की मानसिक उपासना के महत्व को प्रतिपादित करती है। तुंडई मंडलम में तिरुनिंद्रपुर वेदांगम पंडितों से भरा नगर था। इसी नगर में पूसलार का जन्म हुआ। पूसलार की प्रबल इच्छा थी कि अगम वर्णित विधि विधान से भगवान शिव के लिए एक भव्य विशाल मंदिर बनाया जाए, परंतु आवश्यक धन सामग्री जुटा पाना उनके वश में नहीं था, इसलिए वे चिंता तो रहते थे। मंदिर बनाने के संकल्प से वे लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने मन के भीतर ही मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। मन ही मन मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री, बड़ई और शिल्पी, इन सब की संकल्पना कर ली और धीरे धीरे मंदिर निर्माण का कार्य पूरा किया। जब मन मंदिर निर्मित हो गया तो मूर्ति स्थापना और कुंभाभिषेक के लिए श्रेष्ठ दिन और मुहूर्त की भी संकल्पना उन्होंने कर ली थी। इसी समय उस देश के राजा राजसिंह पल्लव महाराज ने कांचीपुरम में एक विशाल कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। इस मंदिर के कुंभाभिषेक के लिए राजा ने जो दिवस और मुहूर्त निश्चित किया, संयोग से कुशलाद के मानसिक मंदिर के कुंभाभिषेक का भी वही दिन था। कुंभाभिषेक से एक दिन पूर्व भगवान शिव ने महाराज के स्वप्न में आकर कहा, त्रिनिंद्रवूर में कुशल ने अपने दीर्घकाल के संकल्प से जो मंदिर बनाया है, मैं उसमें बसने के लिए कल जा रहा हूँ, तुम अपने कार्यक्रम की तिथि आगे बढ़ा लो। आश्चर्यचकित राजा अगले दिन त्रिनिंद्रवूर पहुंचे, सोचा कुशलार के भव्य मंदिर के कुंभाभिषेक में भाग लेंगे। वहां पर जब कोई मंदिर न मिला तो राजा ढूंढते ढूंढते कुशलार के घर पहुंच गए। राजा ने कुशलार से कहा, महोदय, यह जानकर कि आज शुभ मुहूर्त है, मैं आपके द्वारा निर्मित मंदिर का कुंभाभिषेक संपन्न हो रहा है, मैं उसके दर्शन के लिए आया हूँ। भक्त कुशलार भगवान की असीम अनुकंपा को अनुभव कर अभिभूत हो गए। मित्रों से स्नेह की अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अपने द्वारा निर्मित मनोमंदिर का सारा वृत्तांत राजा को विस्तार से बताया। भगवान के असीम अनुग्रह और भक्त की अपार निष्ठा से राजा भी भाव विभोर होकर भक्त कुशलार को प्रणाम कर वापस लौटे। प्रत्येक धर्म में भगवान के असंख्य भक्त मिलेंगे, इनके अनेकानेक आख्यान भी धर्म ग्रंथों में उपलब्ध हैं। अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए अनेक संत भक्तों ने त्याग किया है। पेरी पुराणम में वर्णित कुशलार की कथा अपने आप में अद्भुत है। मानसिक मंदिर का निर्माण, उसने प्राण प्रतिष्ठा और कुंभाभिषेक का मुहूर्त निकालना कुशलार की श्रद्धा भक्ति का चरम उत्कर्ष है। उस राज्य के नरेश ने भी विधिवत मंदिर निर्माण करवाया। संयोग से कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का एक ही दिन निश्चित हुआ। भगवान ने कुशलार के मन मंदिर में जाने का निर्णय किया और नरेश राजसिंह पल्लव को स्वप्न में इसकी सूचना दी। इसका उल्लेख कांचीपुरम में निर्मित कैलाशनाथ मंदिर के शिलालेख में आज भी उपलब्ध है, जहां राजा द्वारा दैववाणी सुनने की घटना की सूचना है। महाराज राजसिंह पल्लव ऐतिहासिक पुरुष थे। शैव धर्म में उनकी अधिक आस्था थी। अपार धनराशि व्यय करके बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। इसकी तुलना में भगवान ने कुशलार द्वारा मन के संकल्प द्वारा निर्मित मंदिर को श्रेष्ठ माना। इस घटना से शैव धर्म की श्रेष्ठता आकाश को स्पर्श करने लगती है। भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र निवास करते हैं, सब कहीं एक साथ हैं। इस घटना के मूल के बाद में भाव यह है कि अत्यंत कोलाहल आडंबर के साथ बनाए गए पत्थर के मंदिर की अपेक्षा बिना आडंबर के मानसिक रूप से निर्मल संत द्वारा भगवत प्रेम का सहारा लेकर बनाया गया मंदिर भगवान को अधिक प्रिय है। इससे मंदिरों का महत्व कम नहीं होता, अभी तो मानसिक रूप से समर्पित भक्त का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि कुशलार की मन की इस मंदिर की सूचना राजा को जब मिली तो उन्होंने भाव विभोर होकर कुशलार को नतमस्तक होकर प्रणाम किया था। कुशलार जैसे महान संत बहुत विरले और बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन उनका दुनिया में भगवान शिव में और शैव भक्त में एक उत्तांत स्थान है, एक उत्कृष्ट स्थान है। इसलिए हम ऐसे महान भक्त कुशलार को नमन करते हैं और मन से उनकी नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
0: Jo purana vyakti, wo aakar kahe हमसे, स्वामी आत्मचेतन जी आप हैं, तो हम क्या कहेंगे बोलो? नहीं है बोलेंगे कि हाँ बोलेंगे? हैं, क्या बोलेंगे आप? हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब हम जब कहेंगे कि हाँ मैं आत्मचेतन हूं, तो तो कोई नया भक्त कहेगा अरे ये तो आत्मानंद जी है, नहीं नहीं ये तो आत्मानंद जी है, अब आत्मानंद जी है ना, तो उसको मैं क्या कहूंगा, हाँ नहीं थोड़ी बोलेंगे, हाँ हाँ हम आत्मानंद जी है। दूसरा कोई था अरे आत्मानंद नहीं आत्म चैतन्य है ना, आप बोले हाँ, अब क्या हुआ भाई, एक ही व्यक्ति का दो नाम हो गए कि नहीं, अब आत्म चैतन्य बड़ा कि आत्मानंद बड़ा, बोलो कौन बड़ा है, आत्म चैतन्य बड़ा है कि आत्मानंद बड़ा है, ये दोनों नाम जिसके हैं वो बड़ा है। हमको तो व्यक्ति से मतलब है, नाम से क्या लेना है, नाम पर दुराग्रह मत करो, व्यक्ति पहचान लिया काम बन गया कि नहीं, तुमको व्यक्ति पहचानने से मतलब है, नाम माध्यम बन गया। अब परमात्मा की भक्ति करनी है, उसी परमात्मा का एक नाम हो गया कृष्ण, उस कृष्ण इस नाम के माध्यम से तुम किसकी भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति करनी है तो एक नाम बन गया शिव, शिव इस नाम के माध्यम से कृष्ण की भक्ति करनी है, परमात्मा की, शिव की नहीं परमात्मा की। राम एक नाम हो गया, तुम्हें परमात्मा की भक्ति करनी है तो राम इस नाम के माध्यम से किसकी भक्ति करनी है, परमात्मा की। तो भक्ति करनी है परमात्मा की, सबसे बड़ा परमात्मा है, न कृष्ण बड़ा है न शिव बड़ा है, है? कृष्ण प्लस भगवान, क्या बोलते हैं हम, कृष्ण भगवान है, शिव प्लस भगवान क्या बोलेंगे, शिव भगवान, राम प्लस भगवान राम भगवान, राम में कृष्ण नहीं, कृष्णन में राम नहीं, राम और कृष्ण दोनों शिव में नहीं, और शिव राम कृष्ण में नहीं, ये जो शिव राम कृष्ण ये जो नाम है एक में दूसरे का व्यतिरेक है कि नहीं, एक में दूसरे का अभाव है, नाम का एक नाम में दूसरे नाम का अभाव है, कृष्ण इस नाम में शिव नहीं है, शिव इस नाम में कृष्ण नहीं, ये परस्पर व्यतिरेक हैं, लेकिन शिव के साथ परमात्मा है, कृष्ण के साथ भी परमात्मा है, राम के साथ भी परमात्मा है, परमात्मा अन्वय है, परमात्मा का सर्वत्र अन्वय है, कृष्ण का सर्वत्र अन्वय नहीं है, परमात्मा का सर्वत्र अन्वय है, शिव का सर्वत्र अन्वय नहीं है, परमात्मा का सर्वत्र अन्वय है, राम का सर्वत्र अन्वय नहीं है, परमात्मा का सर्वत्र अन्वय है, गणेश का सर्वत्र अन्वय नहीं है, तब क्या हुआ, जिसका सर्वत्र अन्वय है, सभी में अन्वय है, वही सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन, परमात्मा। तुमको भूख लगी हो, लग गई नहीं लगी, बोलो भूख लगी हो, उस भूख को हटाने के लिए क्या उपाय है तुम्हारे पास, है रोटी खाना है कि भात खाना है, बोलो रोटी खाने से वो भूख हटेगा कि भात खाने से भूख हटेगा, पूरी खाने से हटेगा कि परोठा खाने से हटेगा, बोलो क्या खाने से हटेगा, भोजन से भूख हट सकता है, किससे हटेगा भूख, किससे भूख हटेगा, तुम भूख हटाने के लिए रोटी खाओगे कि भोजन खाओगे, है बोलो भूख हटाने के लिए केवल रोटी खाओगे कि भोजन खाओगे, भूख हटाने के लिए केवल भात खाओगे कि भोजन खाओगे, भूख हटाने के लिए भोजन खाओगे कि पराठा खाओगे, भूख हटाने के लिए भोजन खाओगे कि पूरी खाओगे, इसी के यहां खाना खाने गए, स्वामी जी ने पूरी दो, अरे भाई अभी तो मरा नहीं है, कहां को पूरोगे, क्योंकि सन्यासी को तो पूर्ते है ना, पूर्ते माने सन्यासी को तो अग्नि संस्कार करते नहीं है, हैं? तो क्या करते हैं, थल समाधि या जल समाधि? तो जल समाधि में तो पूर्ने का क्या है, लेकिन थल समाधि जहां होगी, भूमि में जो समाधि दिया जाएगा, तो वहां क्या करेंगे, तब जाकर स्वामी जी को पूर दो, स्वामी जी ने पूरी दो, हा? नहीं तो क्या करो बोलो? तो तुम्हें भूख लगी है, उस भूख को हटाने के लिए पूरी खाओगे कि भोजन खाओगे, हैं? भोजन, भोजन से ही भूख की निवृत्ति होगी। ये बात अलग है कि पूरी भी भोजन है, लेकिन केवल पूरी भोजन नहीं है। क्या समझे? केवल पूरी भोजन नहीं, पूरी भी भोजन है, केवल पूरी भोजन नहीं है, पराठा भी भोजन है कि नहीं? और केवल पराठा पूरी नहीं, भोजन नहीं है, पराठा भोजन है, क्योंकि भूख को हटा सकता है, भूख निवृत्त करने की क्षमता पराठा में है। लेकिन यदि कोई कहेगा कि नहीं, हम तो केवल पराठा खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, तो वो बद्रीनाथ जाएगा तो मर जाएगा। आजकल तो नहीं मरेगा वो, पहले के जमाने में तो कहां पराठा मिले बद्रीनाथ में, केदारनाथ में सत्तू और चिवड़ा बांध कर ले जाते थे, हाँ, सत्तू और चिवड़ा, चना, ये सब सूखा चीज, वो पानी में डाला, थोड़ा नमक डाला, खा लिया, चल दिया यात्री, कहां पूरी, कहां हलवा, ले जी, तुमको भोजन खानी है बस, क्योंकि पूरी, सब्जी, रोटी, हलवा सब कुछ भोजन है, तब तुमको भोजन से भूख की निवृत्ति होगी। अब यदि तुम कहो कि नहीं, मुझे तो रोटी खानी है, रोटी से भूख हटाना है, रोटी के अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो तुमको रोटी तो परिच्छिन्न हो गया, सब जगह रोटी ना भी मिल सकता है, लेकिन भोजन सब जगह मिल जाएगा। हर समय में रोटी नहीं मिल सकता है, लेकिन भोजन, रोटी नहीं तो भात खाओ, देख लो। हम पिछले बार अमेरिका गए, अब ये शरीर में शुगर है, शरीर में शुगर है तो खान पीन में ध्यान रखना ही पड़ेगा, है ना? तो खान पीन में ध्यान रखना है, तो हम तो भात तो खाते नहीं थे। अब एक जगह भोजन के लिए खाली भात रखा हुआ था और कुछ नहीं था, तो नेपालियों के जो सोसाइटी थी वहां चले गए, कम्युनिटी सोसाइटी नेपालियों की, वो तो खाली भात खाते, सब ने खाली भात बना के रखा है, दाल भात तरकारी, सब लोग खाना खाने, महाराज खाना खाइए, तो देखते हैं तो अरे रोटी नहीं है, नहीं महाराज, अब क्या करोगे बोलो, रोटी खाना है कि भोजन खाना है? भूख लग रही है, अब उसको भूख को हटाना है, हमारा प्रयोजन है। अब हम कहेंगे कि नहीं रोटी खाएंगे, रोटी से ही हमारा भूख जाएगा, तो मरेंगे कि नहीं? तब फिर भात था, भात खा लिए, तो एक यही खाना है, ये दुराग्रह है, इतना ही भोजन है, ये दुराग्रह है, पूरी केवल भोजन है, ये दुराग्रह है, पराठा भोजन है, दुराग्रह है, भात केवल भोजन है, दुराग्रह है, हलवा भी भोजन है, सब भोजन है, भूख निवृत्ति भोजन से होती है, पूरी से नहीं, क्योंकि पूरी से भी होती है, क्योंकि पूरी भी भोजन है। इसी तरह दुख निवृत्ति किससे होती है बोलो? भूख की निवृत्ति भोजन से होती है, तो दुख की निवृत्ति किससे होती है? भगवान से, क्योंकि कृष्ण भी भगवान है, इसलिए कृष्ण की भक्ति कर लो, तो भगवान की भक्ति हो गई तो दुख निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन तुम यदि कहोगे कृष्ण ही भगवान है, इसके अलावा और भगवान नहीं है कहोगे, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। तो किसकी भजन करनी है? भगवान के। बस सबसे बड़े कौन है? कृष्ण की सिवा। ये अब समझ में आ गया आपको? सबसे बड़े राम हैं कि कृष्ण हैं कि शिव हैं कि गणेश हैं, सबसे बड़े परमात्मा हैं। इसलिए किसकी भक्ति करनी है? परमात्मा की। कृष्ण यदि परमात्मा हैं तो कृष्ण भक्ति करो, तुम्हारी कृष्ण भक्ति वृथा बेकार नहीं जाएगा। राम यदि भगवान हैं तो राम भक्ति करो, तुम्हारी भक्ति वृथा निष्फल नहीं होगा। शिव यदि भगवान हैं तो तुम शिव भक्ति करो, तुम्हारी शिव भक्ति निष्फल नहीं होगा। लेकिन ये दुराग्रह नहीं कर देना भाई, दुराग्रह करके नहीं बैठना। मैं तो केवल शिव की ही भक्ति करूंगा, शिव के अलावा और किसी की नहीं करूंगा। ये कहना मैं केवल पूरी को भोजन मानता हूं, पूरी के अलावा किसी को भोजन नहीं मानता, इसलिए पूरी ही मेरे भोग को निवृत्त कर सकते हैं और पूरी के अलावा और कोई भी मेरे भूख को निवृत्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे इसका मतलब ऐसा अर्थ हो गया। भोजन भूख को निवृत्त करता है, भगवान दुख को निवृत्त करते हैं, भगवान की भक्ति करो। अब उस परमात्मा को उस भगवान को जानने कैसे, जानने का माध्यम क्या है, कौन जानता है परमात्मा को? तो बोले त्रैवेद्यम हृद्यम। ये वो परमात्मा त्रैवेद्य है। शंकराचार्य जी भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं हे शिव, आपको केवल त्रयी ही जान सकते हैं, त्रयी वेद्य हैं आप। त्रयी वेद्य माने त्रयी का अर्थ वेदत्रय, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद। और आप कहोगे कि वेद तो चार है, फिर यहां त्रयी क्यों कह दिया? अथर्व वेद क्या है महाराज? अथर्व वेद वास्तव में इन तीन वेद के मंत्रों का ही संकलन है। अथर्व वेद के मंत्र जो हैं वह ऐसा कोई मंत्र नहीं जो ऋग यजुर और साम में न हो। हर मंत्र अथर्व वेद के हर मंत्र ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में है, सामवेद में, ये तीन में से किसी न किसी एक में है। उन मंत्रों को विशेष अनुष्ठान के लिए अथर्व वेद इन मंत्रों के उस अनुष्ठान के अनुकूल मंत्रों को मंत्र दष्टा ऋषियों ने एक निकालकर एक अलग स्वतंत्र अथर्व वेद के रूप में कल्पना कर दी। लेकिन उसके जारी मंत्र है तीन वेद में, इसलिए मूल रूप में वेद त्रयी तीन ही हैं, ऋग यजुर्वेद सामवेद। तो यही तो हमने गीता के उदाहरण दिया ना आपको, भगवान ने क्या कहा, वेदश्च सर्वैहि अहम एव वेद्य, सर्वैहि वेदैः अहम एव वेद्य, अहम वेदैरेव वेद्य। स्वामी अखंडानंद जी श्रद्धे स्वामी जी महाराज जी ने इस गीता के श्लोक में, शंकराचार्य जी ने संस्कृत भाषा में ठीक ऐसी व्याख्या की है, वेद्यैरेव अहम वेद्यैरेव। हर मनुष्यों को ये चाहिए कि मुझे अवश्य जाने, अहम एव वेद्य। मनुष्यों के द्वारा जानने योग्य व्यक्ति और वस्तु कुछ है तो वह मैं ही हूं, और को जाने चाहे न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता है, और को जानो चाहे न जानो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे जरूर जानो। मुझे जाने बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ, अहम वेद्यैरेव, मुझे जानना ही चाहिए। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते आयना है, उसको जाने बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ? संसार और सांसारिक पदार्थों को नहीं भी जानोगे तो भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन उसको नहीं जानोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला है। तुम जहां के वहीं रहोगे। अपरा विद्या को जानकर क्या कर लोगे, बोलो क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? द्विविद्य वेदितव्ये पराच एव अपराच। और अपरा विद्या को जानकर तुम्हें क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तुम्हारा प्रयोजन है दुखत्रय की अत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति तुम्हारा प्रयोजन है, और वो प्रयोजन सिद्ध अपरा विद्या से होने वाला नहीं है। यया यद अक्षरम अधिगम्यते तत् परा, मुंडक उपनिषद की श्रुति। तो उसको जाने बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध न होने के कारण गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा, अहम वेद्यैरेव, तुम्हारा कल्याण तो मुझे जानकर ही होगा, अहमेव वेद्य, जानने योग्य केवल मैं हूं, बाकी और जानने योग्य नहीं है, है? काम चलाने के लिए जान लो तो जान लो, नहीं तो जानने योग्य नहीं है, जान के क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, है? आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिरने के लिए, और तो सब पेड़ गिरने की है, प्रयोजन तो आम खाना है ना, वो तो उसी से प्रयोजन सिद्ध होगा भाई। वेद ही रे, फिर आप जानेंगे कैसे, तो वेद के द्वारा ही मैं जानूंगा, वेद अर्थात औपनिषद, तम तम औपनिषद पुरुषम पृच्छामि। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, महाराज मैं उस औपनिषद पुरुष को जानना चाहता हूं, उस औपनिषद पुरुष क्या है, औपनिषद माने उपनिषद प्रतिपाद्य जो पुरुष है,

ना जाएंगे। और कैसे आप तो हृदयम, आप वो जो त्रैवेद्य स्वरूप है वह हृदयम, हृदय का अर्थ होता है हृदय को अति प्रिय, क्या हृदय में अपरोक्ष अनुभूत होने वाला, हृदय के अतिरिक्त परमात्मा का अनुभव करने का कोई आलंबन नहीं है ना। चैतन्य का अनुभव अनुभूति कराने वाला एक ही केंद्र है, एक ही पॉइंट है दुनिया में, वो पॉइंट उस केंद्र का नाम है हृदय। हृदय होगा तो वह चेतना अभिव्यक्त भी होगा और चेतना की अनुभूति भी होगी। जहां हृदय नहीं होगा वहां चेतना तो है लेकिन अनुभूति अनुभव गम्य नहीं होगा। तुम्हारे इस कुर्सी में शिव है कि नहीं बोलो, जिस कुर्सी में तुम बैठे हो उस कुर्सी में शिव है कि नहीं? क्या अपराध कर रहे हो तुम, कुर्सी शिव जी के ऊपर चढ़ के बैठे हो हैं? तो तुम यही कहोगे कि शिव नहीं है इसलिए ना बैठो, नहीं तो प्रत्यवाय लगेगा कि नहीं, शिव जी के ऊपर चढ़ के बैठ जाना। और ये कहां की मूर्खता है भाई, एक तरफ शिव को तुम सर्वव्यापक कहते हो और दूसरी तरफ ये कहते हो कि कुर्सी में शिव जी नहीं है, तो ये मूर्खता है कि नहीं है? शिव जी सर्वव्यापक है तो कुर्सी में है कि नहीं? कुर्सी में है तो तुम शिव जी के ऊपर चढ़कर बैठे हो कि नहीं? अब उस अपराध का कौन क्षमा करेगा हा? बोलो, उस अपराध को क्षमा कौन करेगा? अब जमीन में शिव जी है कि नहीं है? जमीन में शिव जी है कि नहीं? अब तुम जूता पहनकर, चमड़े की जूता पहनकर चलोगे तो कहां चलोगे बोलो? हाँ, भगवान शिव की महिमा पुराणों में ऐसा लिखा है, और शिव महिमा तो तुम लोगों को याद ही है ना। त्वमर कस्तम सोमस त्वमसि पवनम त्वम हुतवस त्वमापस्तम व्योम त्वम धरणी। ये स्तोत्र क्या कह रहा है? त्वम धरणी, ये जो पृथ्वी है ये गोल क्यों है बोलो? पृथ्वी चपटी क्यों नहीं है, लंबी क्यों नहीं है? पृथ्वी गोल क्यों है? क्योंकि शिवलिंग हमेशा गोल ही होता है, इसलिए ये शिवलिंग है पृथ्वी। बोलो, अब जूता पहनकर कहां चलोगे हैं? कहां चलोगे? शिवजी के ऊपर ही चलना पड़ेगा कि नहीं? अब उस प्रत्यवाय से तुम कैसे मुक्त होगे, उस अपराध से तुम मुक्त कैसे होगे है? क्षमस्व त्रिविधा अपराधम, हे शिव मेरे से पल पल में, पग पग में, एक एक क्रिया में अपराध हो रहा है। उस अपराध से मुक्ति का एक ही उपाय है कि तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं है? क्योंकि पृथ्वी में यदि कोई व्यक्ति, पृथ्वी में चलते चलते यदि कोई व्यक्ति फिसल गया तो कहां फिसला? धरती में फिसला। और वो प्रयत्न करके उठेगा तो कहां उठेगा? अरे फिसला वहीं, जहां फिसला वहीं उठेगा, तो क्या फायदा हुआ उठने का है? लेकिन दूसरा आलंबन तो है भी नहीं, तो उठे कहां? धरती में फिसल गए करके यदि धरती में मैं नहीं उठूंगा कहोगे तो फिर पड़े रहो, और उठना होगा तो कहां उठना होगा? उसी में। इसलिए शिवक की अवज्ञा यदि हमारे अज्ञानता से या व्यवहार में शिव अवज्ञा अनिवार्य है, होता ही है, तो उसका क्षमा कौन करेगा? तो वही करेंगे। कैसे करेंगे? हाथ जोड़ लो बस, हो गया चमस्वा। ये शिवानंद लहरी ऐसे भाव भरा स्तोत्र है, क्या भाव भरा है। बुद्धि को लेकर शिवानंद लहरी सुनने नहीं आना हो हा? बुद्धि को लेकर शिवानंद लहरी सुनने आओगे तो बुद्धि में तो तर्क वितर्क चलेंगे।

और उस तर्क वितर्कों के सामने ये शिवानंद लहरी है वो टिक नहीं पाएगा। ये तो भाव लेकर आओ, क्योंकि हृदय में आकर वो सरोवर के रूप में परिणत होगा। ये तो हृदय में भाव, ये तो भाव पूर्वक श्रवण करने का स्तोत्र है। ये खंडन मंडन करने का नहीं है, यहां तर्क वितर्क उहा पोह खंडन मंडन उसके लिए करो, ब्रह्मसूत्र है, न्याय प्रस्थान है, ब्रह्मसूत्र है, करो तर्क वितर्क। लेकिन ये तो भावपूर्वक श्रवण करो। त्रयी वेद्यम आगे इसके जो चौथा श्लोक है, पांचवां श्लोक, शंकराचार्य ने सबका खंडन कर दिया है, सबका खंडन कर दिया पांचवें श्लोक में। त्रयी वेद्यम हृद्यम, हृद्यम माने हृदय को अति प्रिय, हृद्यम, और हृदय का दूसरा अर्थ होता है हृदय गम्यम, हृदय में अनुभव में आते हैं, हृदय के द्वारा ही, हृदय में ही वह अभिव्यक्त होते हैं। शिव की जो चेतनता है वो हृदय में अभिव्यक्त होता है, शिव की जो आनंदता है वो हृदय में ही अभिव्यक्त होगा, इसलिए उसको कहा हृदयम। त्रिपुरहरम, तीन पुर को हरण करने वाले। त्रयी वेद्यम का अर्थ कर दिया ज्ञान शक्ति प्रधान शिव, हृदयम का अर्थ कर दिया है इच्छा शक्ति प्रधान शिव, और त्रिपुर हरम इससे कह दिया क्रिया शक्ति प्रधान शिव। एक ही शिव में ये तीनों शक्ति विद्यमान है, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। त्रिपुर हरम, तीन पुर को हरण करने की क्षमता केवल आप में है, आपके अलावा दूसरे में नहीं है। भगवान शिव का नाम क्या है? त्रिपुर हरा, और तीन पुर को हरने का क्षमता शिव में कैसे है और में कैसे नहीं है? क्योंकि त्रिपुरासुर को नाश करने की क्षमता और किसी में नहीं दिखी है। पुराण आदि इतिहास पढ़ लो, त्रिपुरासुर को किसने मारा? शिवजी ने, और कोई मारने में असमर्थ हुए, कोई नहीं मार पाए। जब शिवजी से प्रार्थना की गई तो भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को नाश कर दिया। शिव ने त्रिपुरासुर को कैसे नाश किया? क्योंकि शिव ज्ञान स्वरूप है, ईशान सर्व विद्या नाम ईश्वर, शिव तो ब्रह्म विद्या रूप है, ज्ञान स्वरूप है। विद्यैव तन्नाशविदौ वडीयसे न कर्म तज्जम सविरोधवीरितम्, कारण शरीर को नाश करने की क्षमता किसमें है? विद्या में है, ब्रह्म विद्या में, और वो ब्रह्म विद्या किसका स्वरूप है? भगवान शिव का स्वरूप है। औपनिषद पुरुष कौन है? शिव है, और औपनिषद जो ज्ञान है वही कारण शरीर को नाश करने में समर्थ है। इसीलिए कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये तीन शरीर ही हमारा त्रिपुरासुर का स्वरूप है। तीन शरीर में इस समय हम स्थूल शरीर में विचरण कर रहे हैं, रात को सूक्ष्म शरीर में विचरण करेंगे, फिर और गहरी रात में कारण शरीर में विचरण करेंगे, और फिर सुबह होते हुए स्थूल शरीर में। त्रिपुरासुर की कहानी क्या है? ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगी कि मेरी मृत्यु कभी न हो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृतत्व की प्राप्ति तो विद्या से ही, ब्रह्म विद्या से संभव है, वो ज्ञान से संभव है। तमेव विदित्व अति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते अनाया, किसी के वरदान देने से कोई अमर नहीं होगा। हाँ, अमृतत्व की प्राप्ति तो ज्ञान से होती, तो कोई और मृत मार्ग, कोई और निमित्त मार्ग, यदि कभी मरना न पड़े ये चाहता है तो आत्मानंद गिरी के चरण में जा,
है, सदगुरु के पास जाओ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध पराम शांतिम अचरेण तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। यदि तुम कभी मरना न पड़े ये चाहता है तो जा तत्वदर्शी किसी ज्ञानी के पास प्रणिपात होकर जाओ। हा? ये तपस्या तपस्या करने से मिलने वाला नहीं है। यदि तपस्या ही करनी है तो यस्य ज्ञानमयम तपः, वेदांत विचार रूपी तपस्या कर, तब तू अमर हो पाएगा। और ऐसी तपस्या से तू अमर नहीं हो सकता है। और हमसे यदि तू चाहता है अमर होना तो वो तो नहीं मिलेगा। हाँ, निमित्त मृत्यु मांगेगा तो हम दे देंगे। बोले महाराज निमित्त मृत्यु का मतलब क्या होता है? उसने कहा यदि ऐसा हो तो मेरी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। इसको कहते हैं निमित्त मृत्यु। ये निमित्त बने तो मेरी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। बोले तब ऐसा करो, मुझे तीन रथ दे दो और वो तीनों रथ एक दूसरे की विपरीत गति से भ्रमण करे, एक विपरीत स्वभाव वाला हो, विपरीत धातु से बना हो, एक ही धातु से ना बना हो, अलग अलग धातुओं से बना हो, है? तीन रथ दे दो और मेरी ये गति हो कि तीन रथ में अपने मर्जी से मैं किसी भी समय में कहीं भी रथ चेंज करता रहूं, विचरण करता रहूं, घूमता रहूं। और यदि कोई व्यक्ति तीनों रथ को एक ही बार में नष्ट कर सकता है तब तो मेरी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। एक रथ को नष्ट करे मैं दूसरे रथ में बच जाऊं, दूसरा नष्ट करे तीसरे में, तीसरा नष्ट करे पहले में। है? ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दी। और यह संभव था, अभिजीत नामक मुहूर्त में तीनों रथ एक आमने सामने होते थे और भगवान शिव ने अकल्पित प्रसिद्ध रथ तीरों के माध्यम से त्रिपुरासुर को मारा। ये पुराण की कथा है। रथक्षोणीयंता सत धृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रारकौ रथचरण पाणी सर इति दिदक्षोस्ते कोयम त्रिपुर तृणमाडंबर विधि। हे शिवा, आपके लिए तो त्रिपुरासुर एक सूखे घास की तिनके के बराबर था, फिर भी आपने ये आडंबर रचना की कि पृथ्वी को रथ बनाया, विष्णु को तीर बनाया है, और ये सब के माध्यम से मारा त्रिपुरासुर को। ये आडंबर आप चाहते तो संकल्प से ही खत्म हो जाता, फिर भी आडंबर शर्त उसने रखा था, शर्त अनुसार ही आपने उसको मारा। तब से भगवान शिव का नाम पड़ा त्रिपुरा हरा। और हम भी त्रिपुरासुर होकर बैठे हैं अभी है? हम अभी क्या हैं? त्रिपुरासुर होकर बैठे हैं। और हमारी ये आसुरी वृत्ति कब नष्ट होगी? असुर शब्द का अर्थ क्या है? आदिगुरु सर्वज्ञ भगवान शंकराचार्य जी ने गीता में असुर शब्द का व्याख्या की है, असुसु प्राणेशु इंद्रियेशु रमन्ति इति असुरः। असु शब्द का अर्थ प्राण, गतासु न गतासु च नानुसोचन्ति पंडिता। और प्राण शब्द का अर्थ इंद्रियां, और इंद्रिय और विषय के संयोग में जो रमण करे। हाँ, इंद्रियों से विषय ग्रहण करना ही उसको आनंद मानता हो जो, वह असुर। आप उस आम का रस पियोगे तो आनंद आएगा कि नहीं? तो असुर आप सिद्ध हो गए। बस, क्योंकि रस का और जुवा का संयोग हुआ, रस और जुवा के संयोग को तुम आनंद मान रहे हो तो तुम्हारा नाम क्या हुआ? है, क्या हुआ बोलो? है, क्यों डर रहे हो? असुर। और प्रवचन सुनते समय आनंद आ रहा है कि नहीं? शब्द और विषय के संयोग से आनंद आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा नाम क्या हो गया? हेलो जी, ये तो असुर। एयर कंडीशन में बैठकर प्रवचन सुन रहे हो, आनंद आ रहा है कि नहीं? तो इंद्रिय को ठंडा लग रहा है कि नहीं? क्या हुआ? असुर माने इंद्रिय, और इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण कर रहा है, उसको तुम आनंद मान रहे हो तो माने असुर। असुसु प्राणेशु इंद्रियेशु रमन्ति इति असुरा।
और ये इंद्रियों से विषय के माध्यम से होने वाले आनंद की अनुभूति असुर ही करते हैं। और इस भाव से निवृत्ति कब होगी बोलो? जब ब्रह्म विद्या से कारण शरीर, वासनामय सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर तीनों रतों का नाश होगा, तब तुम्हारा आसुरी भाव से निवृत्ति होगी। तब क्या होगा? ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, तब असुर हो गए। ज्ञान से जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी, अपने पारमार्थिक स्वरूप का अनुभव होगा, तब जाकर तुम्हारे जीवात्मा के हमारे आसुर भाव से निवृत्ति होगी। वो तीन रथ का नाश करने वाला कौन? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या कौन है? साक्षात भगवान शिव ही ब्रह्म विद्या है, इसीलिए त्रिपुरा हरा। भाई इस श्लोक को पूरा कल करेंगे, है? समय थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, 5:30 से 7। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவ மஹிம்னா ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ தர்மானந்த்ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: கி ஜிஸ் தன் குவா தஸ் வர்ஷ் மே பிராப்த் கர் சக்தா உஸ்கோ காதா ஏக் வர்ஷ் கே அந்தர் ஹி ஹோனா சாஹியே. ஜோ காம் 20 வர்ஷ் மே உஸ்கோ 10 வர்ஷ் கே அந்தர் கர்னா சாஹதா ஹை. क्योंकि हमने संसार के विषय को, पदार्थों को, धन को इतना महत्व दे दिया है कि सब कुछ छोड़कर उधर तत्परता स्थिरता से लग जाते हैं. वैसी स्थिरता तत्परता भगवान के भक्ति में हो तो भगवान तत्काल दर्शन दे देते हैं, हमारी स्थिरता में ही कमी होती है. तो यहां पर बताया कि किस प्रकार रावण ने व्यष्टि को समष्टि में विलय किया. ये जो व्यष्टि मतलब कि हमारी आंख है, आंख का तेज सूर्य का अंश है, कान में श्रवण इंद्रिय है या आकाश का अंश है, दिग देवता का अंश है. तो सारे देवताओं को जो व्यष्टि मंश है, इस व्यष्टि को समष्टि में मिलाना ही ये भक्ति है. यही भक्ति रावण ने किया. अपने आप को रावण ने सर्वात्म रूप से चिंतन किया, सीमय चिंतन किया. जैसे प्रसन्न होकर भगवान उसे तीनों लोकों का अधिपति बना दिया, फिर भी रावण को अहंकार हो गया क्योंकि मन को समर्पित नहीं किया था. यह बात आपको 12वें श्लोक में बतला रहे हैं, उच्चारण करने पहले.

0: विक्रमयत अलभ्यापाताले प्यलसचलितंगुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मूयति खल। त्वद अधिशतो कैलाशे, भगवान शंकर हमेशा कैलाश पर निवास करते हैं। कैलाशेपि त्वद अधिशतो अपि त्वत् सेवा समधिगत सारम। कैलाश पर जहां भगवान शंकर नित्य विराजमान रहते हैं, वहां पर भी त्वत् सेवा समधिगत सारम, आपकी सेवा से जिस रावण ने भुज वनम 20 भुजाओं का एक वन प्राप्त किया, बलात् मल्ल की अत्यंत बहादुरी के साथ विक्रमयत मल्ल की उस कैलाश पर्वत को अजमाने लगा। अमुष्य उस रावण को त्वयी मतलब आपके अलस चलित अंगूठ सिरसी, आप जरा सा अलसाए हुए अंगूठे से दबा दिए। इसके बाद क्या हुआ, पाताले अपि प्रतिष्ठा, पाताल में भी प्रतिष्ठा मतलब टिकाऊ अलभ्य नहीं मिला। आसित खल उपचित ध्रुवम मुयति, जो खल है वह समृद्ध होने के बाद अवश्य ध्रुवमल अवश्य मुह्यति उपकारी को भूल जाता है। तो इस श्लोक में रावण के विषय में बतला दिया किस प्रकार रावण मुग्ध हो गया। व्यवहारिक जीवन में भी जब मनुष्य को ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है तो वह मुग्ध हो जाता है, माता पिता गुरु का भी तिरस्कार कर देता है। जिसके द्वारा लालित पालित हुआ, शिक्षित हुआ, इतना बड़े उच्च पद को प्राप्त किया, पर अहंकार ऐसा है ना कि अंधा बना देता है। इसी बात के श्लोक में बताया कि भगवान शंकर कैलाश पर निवास करते हैं, मां भगवती पार्वती बाजू में बैठी हुई हैं। रावण पहुंचा, पहुंचने के बाद सोचा कि अब सारे दुनिया में कोई भी मेरे से लड़ने को तैयार नहीं, जरा चल के एक बार भगवान शंकर को अजमा लें। तो वहां जाकर जैसे ही हिमालय को वो सोचा कि जरा देखता हूं कितना इसमें बल है, उधर पार्वती जी बाजू में बैठी थी। जब रावण ने उठाना चाहा कैलाश पर्वत को तो जरा कंपन हुआ, कंपन होती पार्वती जी तुरंत भगवान शंकर को पकड़ ली। पार्वती जी ने कहा ये क्या हो रहा है, इतना भूकंप आ रहा है या कोई ज्वालामुखी फट रहा है, अचानक ये क्या हो रहा, आप यहीं बैठे हैं और ये दूसरा कौन संहार कर रहा, संहार के देवता आप है, आपसे भी कोई बड़ा देवता तो नहीं बन गया जो कि इस हिमालय के ऊपर जो है आपका कैलाश उसको भी उठाना चाह रहा है। भगवान शंकर समझ गए, मुस्कुराए, बोले कि वही जो तेरा चेला है ना रावण, रावण जो है जरा अपने बल को अजमा रहा। परंतु भगवान की अंगूठा हिलाते ही बेचारा पाताल लोक पहुंच गया, वहां भी उसको कोई शरण नहीं दिया। तो देखिए कैलाश शब्द का अर्थ यदि विचार करें शब्द के ऊपर, कई गई शब्दे है, शब्दे मतलब शब्द अर्थ में धातु है, कई गई शब्दे धातु है, कई शब्द गई शब्द अर्थ में ये धातु का प्रयोग होता है। और लास शब्द का अर्थ होता है रलयोर अभेद, रकार लकार का भेद होता है। तो रास रस एव रास, श्रुति कहती है रसो वैश, रस परमात्मा है जो ब्रह्मानंद है। तो रस एव रास, तो कैलाशे का अर्थ है ब्रह्मानंदे। जैसे उपनिषद में ब्रह्मलोक शब्द आता है तो भगवान शंकराचार्य व्याख्यान करते ब्रह्म लोक ब्रह्म लोक, ब्रह्म अलग है लोक अलग है दो चीज नहीं बल्कि ब्रह्म वही लोक है। यहां पर भी कैलाशे का अर्थ है जो औपनिषद प्रतिपाद्य जो ब्रह्मानंद, उसी का नाम है कैलाश। उसी ब्रह्मानंद में भगवान शंकर हमेशा रमण करते हैं या तद्रूप है। ये कैलाश शब्द की बड़ी भारी महिमा है, जहां पर कैलाश वहां पर भगवान शंकर अपने आप विराजमान होते हैं। ऋषिकेश कैलाश की भी ऐसी ही कुछ घटना है, बहुत कम लोगों को मालूम होगी। कैलाश आश्रम के आदि महाराज जिनका नाम था धनराज गिरी जी महाराज, करीब 150 वर्ष पुरानी घटना होगी। तो आदि महाराज उस समय पंच कुटियां बनाकर रहते थे, स्वाध्याय करवाते थे वेदांत का। उन्हें रात में दो बार तीन बार सपना हुआ। सपना में महादेव ने संकेत दिया, वह संकेत था हरिद्वार के सेठ भारामल बगीची, कनखल के अंतर्गत पड़ता है। हरिद्वार में कनखल एक क्षेत्र का नाम है। कनखल में भारामल सेठ की बगीची थी, उस बगीची का दृश्य था सपने में। और भगवान बार बार कह रहे थे कि तुम मुझे यहां से उठा ले जाओ, क्योंकि गंगा के प्रवाह से ये मेरा लिंग बहने वाला है। एक बार, दो बार, तीन बार सपना हुआ, ध्यान नहीं दिए, बोले सपना ऐसे होता रहता है। जब बार बार हुआ तो आदि महाराज धनराज गिरी ने सपने में ही कहा कि देखिए महादेव, मैं तो हूं विरक्त सन्यासी और मैं आपको ले आकर के स्थापना कर दूंगा, आप कौन आपकी आरती पूजा करेगा, कौन भोग लगाएगा, ये कहां से इतनी व्यवस्था होगी। भगवान शंकर ने स्वप्न में ही निर्देश दिया कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम मुझे ले जाकर स्थापना कर दो, केवल वेदांत सुनाना और सारी व्यवस्था का भार मेरे ऊपर छोड़ दो। जब भगवान शंकर ने ऐसा आश्वासन दिया स्वप्न में, तो जैसा स्वप्न हुआ था वैसे ही 10-12 महात्माओं को लेकर के धनराज गिरिज महाराज पैदल चल पड़े। उस समय इतने साधन नहीं थे और पैदल चल करके ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंचे, करीब 24 किलोमीटर है। और आकर देखते हैं सपना के आधार पर, तो वही भारामल के बगीची में गंगा जी के प्रवाह से वह पूरा जो मंदिर था गिर चुका था और शिव पिंडी के पास से गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। विधि विधान से स्वस्ति वाचन करते हुए अपने कंधे को उठा करके आदि महाराज महादेव को ले जाकर ऋषिकेश में जहां कैलाश आश्रम स्थापित कर दिया। उनका नाम रखा अभिनव चंद्रेश्वर महादेव। जब किसी मंदिर में भगवान शिव की प्रतिष्ठा होती है या राम की किसी देवता की, तो नाम संस्कार करना पड़ता है, तो उनका नाम रखा अभिनव चंद्रेश्वर महादेव। और आदि महाराज का नियम था कि उन्हें हर दिन जो है वेदांत श्रवण कराना। वेदांत श्रवण कराते थे और महादेव की जिम्मेदारी बन गई थी सारी व्यवस्था संभालना। यह आज भी कैलाश की विशेषता है। आप जाकर प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि कैलाश आश्रम में कम से कम 100 महात्मा अंदर रहते हैं और इससे ज्यादा बाहर से महात्मा आते हैं। हमेशा वेदांत का स्वाध्याय चलता रहता है और उसी महादेव के ऐसी प्रताप है, उस संस्थान से बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। अभी डालमिया जी 3-4 रोज पहले मिले थे, बोल रहे थे कि कैलाश आश्रम सन्यासियों की, विद्वानों की फैक्ट्री है। जैसे फैक्ट्री माल निकलता है ना, अब आप देख लो चिन्मयान जी महाराज भी कैलाश की आचार्य जो तपोवन स्वामी थे उनसे वेदांत अध्ययन किए थे। विवेकानंद जी तो साक्षात आदि महाराज से वेदांत का श्रवण किए थे। जितने ही बड़े बड़े महापुरुष इस जमाने के हैं, अक्सर प्रायः जरूर वहां साक्षात या परंपरा से जरूर ही जुड़े होंगे। उसी परंपरा में स्वनाम धन्य पंचम पीठाचार्य प्रेमपुरी जी महाराज हुए हैं और जो कैलाश आश्रम में बिल्कुल हिमालय की गोदी में है, वहीं से दिव्य ज्योति आपकी बंबई में आई। और बंबई में उन्होंने ऐसा कल्प वृक्ष लगाया जिसके नीचे श्रोता वक्ता दोनों बैठ करके वेदांत का स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रेमपुरी जी महाराज की हम लोगों पर कृपा आशीर्वाद वरदान है। कल्पना कीजिए, यह यदि वेदांत कलत्तरु नहीं होता तो हम लोग यहां पर इसका लाभ उठा नहीं पाते। संसार में सब कुछ सुलभ है। भगवान शंकराचार्य के वचनों में पर तीन वस्तु अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मोक्षत्व और महापुरुषों की संगति। परंतु इन तीन दुर्लभ चीजों को प्रेमपुरी महाराज जी ने यहां पर इस संस्थान के द्वारा सुलभ बना दिया। यहां के कार्यकर्ता ही बड़े धन्य हैं जो इस प्रकार से समुचित व्यवस्था करते हुए श्रोताओं का ध्यान रखते हैं। तो देखो, कैलाश का अर्थ है कि जहां पर हमेशा वेदांत का श्रवण चले। ये केवल मात्र हमारे बुद्धि की व्युत्पत्ति नहीं है, ये शास्त्रीय व्युत्पत्ति बता रहा हूं। कई गई व्याकरण का शब्द है और रसो वैसा उपनिषद कहती है रस एव राष्ट्र। तो कैलाशे कार्यता जहां पर अहर्निश वेदांत का स्वाध्याय चिंतन होता उपनिषद का उसको कैलाश कहते हैं और वहां पर भगवान शंकर सूक्ष्म रूप से अवश्य विराजमान रहते हैं। परंतु ये जो रावण था रावण ने क्या भूल कर दिया कि दस सिर को तो समर्पित किया था पर मन को समर्पित नहीं किया था, इसीलिए ध्रुवम उपचितो मुह्यति खल। रावण जो है ना उपचित मतलब की समृद्धि प्राप्त करने के बाद मुग्ध हो गया, मुग्ध होने के बाद भगवान ने उसको भी दंडित किया। इधर पुलस्त्य जो रावण की पूर्वज हैं वे भगवान शंकर के पास आए, बोले महादेव आप इसके अपराध को क्षमा करें, ये महामूर्ख इसको पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। जब पुलस्त्य ऋषि आ करके भगवान से प्रार्थना किए तब जाकर रावण का फिर उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। यहां पर देखिए इस श्लोक का तात्पर्य इतने में है कि ध्रुवम उपचितो मुयति खलह, इसका तात्पर्य है श्लोक का हृदय है। व्यवहारिक जीवन में भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो नेता होते हैं वे चुनाव के पहले सवर्णों की निंदा करेंगे, ब्राह्मणों की निंदा करेंगे, परंतु जब घर में पूजा पाठ कराना हो या चुनाव में जीतने के लिए पूजा पाठ कराना हो तो किससे कराएंगे? ब्राह्मण से कराएंगे, भंगी से कराएंगे, ब्राह्मण से ही कराएंगे। एक तरफ तो चुनाव में जीतने के लिए ब्राह्मण से पूजा पाठ कराएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे जब सभा में तो वोट बैंक के लिए उसी की निंदा करेंगे। ऐसे ही जब नौकरी देना हो ना ब्राह्मण को, सवर्ण को, ब्राह्मण क्षत्रिय को, तो बोलेंगे महाराज ये तो स्वयं विकसित है, हमें जो है ना देना है आरक्षित को नौकरी, पर बीमार पड़ेंगे तो, जब बीमार पड़ेंगे तो आरक्षित डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे, बढ़िया डॉक्टर खोजेंगे जो बहुत कुशल हो। उस समय आरक्षित डॉक्टर से जाएंगे नहीं जानबूझ करके भी, ये तो आरक्षण के बल पर नौकरी प्राप्त किया है। मान लो अपना बढ़िया बिल्डिंग मकान दुकान बनाना हो तो आप आरक्षित इंजीनियर के पास नहीं जाएंगे, बल्कि जो बढ़िया कुशल हो उससे मकान बनवाएंगे। पर सरकारी काम करवाना हो, नौकरी लगवाना हो तो कोई भी आरक्षण वाला चाहिए। तो जो जिससे लाभ प्राप्त करके और ठुकरा दे उसको खल कहते हैं। खल की परिभाषा यही है कि जिससे लाभ तो प्राप्त कर ले, फायदा उठा दे और बाद में उसी को हानि पहुंचाए, उसका नाम है खल। तो जो ऐसे खल हैं वे खल हमेशा जो है तिरस्कार करते हैं पर उनका कभी उद्धार नहीं होता है। इस बारहवें श्लोक में पुष्पदंताचार्य जी ने बताया। अब आपको हम द्वापर में ले आते हैं क्योंकि जल्दी पूरा करना है ना। द्वापर में देखिए किस प्रकार से भगवान शंकर की उपासना किसने किया, पहले उच्चारण कर लें।
1: यद्रिद्धिं सूत्राम्लो वरद परमोचैरपिशति मदचक्रे बाण परिजन विधेयस्त्रिभुवन नतचित्रं तस्मिन् वरिवसितरी त्वच्चरणयो न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसाह्यै यवनति।
0: द्वापर में सुत्राम्लो वरद, यहां वरद भगवान शंकर का संबोधन है। हे वरद बरमल श्रेष्ठ, बरम श्रेष्ठम ददादिति वरद, सर्वश्रेष्ठ है आत्मज्ञान, सबसे श्रेष्ठ धन है आत्मधन, इसके बाद फिर आपका शरीर है, द्रव्य सब बाद के हैं। तो जो आत्मज्ञान को देने वाले हैं ऐसे भगवान शंकर को वरद से संबोधन किया। परिजन विधेयस त्रिभुवन, आप परिजन का अर्थ होता है परिवार, मतलब कि बाणासुर ने आपको प्रसन्न करके तीनों लोगों को दास की तरह से अधीन बना लिया। बाणा मतलब बाणासुर, परमोच्चय सतिम, परमोच्चय का अर्थ सबसे बड़े चले श्रेष्ठ, सुत्राम्ल मतलब इंद्र, इंद्र का नाम एक सुत्राम्ल है। रिद्धि मतलब ऐश्वर्य को, अपि मतलब भी,
1: यत मतलब जो,
0: आधा मतलब के नीचे कर दिया, अभिभूत कर दिया चक्रे। तत मतलब वह, त्वत चरणयो आपके चरणों की, वरी वशीतरी का अर्थ है कि सेवा पूजा का ही प्रताप है। तस्मिन चित्रम इसमें कोई आश्चर्य नहीं। त्वयी शिरसी शिरसा अवनति आपके चरणों में जो सिर का झुकना है वह कस्से उन्नते न भवति किसके उन्नति के लिए विकास के लिए नहीं होता है अर्थात सबके उन्नति का कारण बन जाता है। ये जो बाणासुर है, बाणासुर भगवान शंकर को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके पूरे संसार को परिजन बना लिया मतलब कुटुंब परिवार के समान। इंद्र को लोग मानते हैं प्रणाम करते आदर्श जो करते हैं वह डंडे के भय से करते हैं परंतु बाणासुर ने अश्वमेध याग नहीं किया। इंद्रासन पाने के लिए 100 अश्वमेध याग करना पड़ता है इसके बाद आप इंद्रासन को प्राप्त कर सकते हैं परंतु बाणासुर ने अश्वमेध याग भी नहीं किया केवल मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाता और बना करके फूल पत्ती से पूजा करता। पूजा करने के बाद नर्मदा जी में उसको भी बहा विसर्जन कर देता। इस प्रकार से बाणासुर हर दिन मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाए बनाकर पूजा कर विसर्जित करता था। इस पूजा से भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए उसको मुंह मांगा वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद उसने पूरे संसार को परिजन मतलब परिवार के समान। देखिए परिजन में और प्रजा में अंतर है। परिजन बोलते परिवार को, परिवार आपका आदर सम्मान न श्रद्धा से करता है हृदय से करता है पर नौकर आपकी बात मानता है डंडे से। नौकर में बच्चा मानता है, लोग कहते हैं ना कि नौकर तो हमारी बात मानता है आज्ञा मानता सम्मान करता नमस्कार करता है पर बच्चे नहीं करते हैं लोग शिकार करते। नौकर तो डंडे के भय से करता है उसको मालूम नहीं करूंगा तो मालिक हटा देगा या तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा इस भय से करता है परंतु आपके बच्चे को न तनख्वाह का लोभ है न डंडे का भय है। तो बाणासुर ने इस प्रकार से संसार को अपने अनुकूल बना लिया सभी उसके अनुकूल बन गए जैसे कोई परिवार होता हो। न तच्चित्रम इसमें किसी प्रकार का वैचित्र नहीं है तो भगवान की उपासना से अलभ्य भी लभ्य हो जाता है जो वस्तु दुर्लभ वह भी सुलभ हो जाती है। इस प्रकार से यहां पर पुष्पदंताचार्य बदला रहे हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में जैसे भी हो आपका कोई उपासना करे चाहे जान कर करे चाहे अनजान के करे आप उस उपासना से श्रेष्ठ वरदान को देते हैं। भस्मासुर का प्रसंग भी आगे आता है कि भस्मासुर भी भगवान शंकर को प्रसन्न किया परंतु भस्मासुर रावण की तरह से स्वयं ही पार्वती जी को पाने के लिए भगवान शंकर की तरफ दौड़ा कि यदि हम भगवान शंकर को भस्म कर दिए तो पार्वती उपलब्ध हो जाएगी जगत का गुरु बन जाऊंगा परंतु होगा विपरीत उसका विनाश हुआ। तो यहां पर जो ध्रुव मतलब निश्चित खला मतलब दुष्ट जो कृतघ्न है जिससे लाभ प्राप्त करता है उसका तिरस्कार करता है उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता कल्याण नहीं हो सकता। यहां दोनों बार बतला दिया यदि आप किसी की उपासना से कुछ प्राप्त किए हैं प्राप्त करने के बाद कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करेंगे जैसा कि मनु संविधान है मनु महाराज कहते हैं कीर्तम प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। यदि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो उसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापन करें सनातन धर्म है। यदि आप कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करके यदि आप कहें कि मैंने किया इसने क्या किया तो अहंकार होगा। अहंकार मतलब कि हमारे उपासना से हमारे तपस्या से सब कुछ प्राप्त हुआ। एक तपस्वी थे हिमालय में बहुत तपस्या किया तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रसन्न होकर वरदान देने आए। वरदान देने आए तो तपस्वी ने वरदान में मांगा आप हमें अमर बना दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि इस शरीर से अमर नहीं हो सकते हो, मरने के बाद तुम्हें अमरता मिल जाएगी। अमर अहंकारी आदमी जब तपस्या करता है अमरता पाने के लिए, तो जब भगवान शंकर ने कहा कि अमरता स शरीर कोई हो नहीं सकता, फिर ऋषि तपस्वी ने कहा कि आप हमें इतना ऐश्वर्य दीजिए कि मांगने वाले को मैं कभी इनकार न कर सकूं। भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान के पास क्या कमी। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रहा, पर धीरे धीरे काल बीतता गया, उसको अहंकार हो गया कि मैंने बड़ी तपस्या की, तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न किया, वरदान में भगवान से हमने अमरता मांगी। पर भगवान ने कहा कि मरने के बाद तुम अमर हो जाओगे और जीते जी अमरता नहीं मिल सकती है, तो हमें ऐश्वर्य प्रदान किया। तपस्वी को अहंकार हुआ कि हमारे तपस्या से ऐश्वर्य मिला। भगवान शंकर ने फोकट में तो दिया नहीं, जो भी कुछ दिया तपस्या से, तो यही अहंकार आदमी को जो है ना भटकाता है। तपस्या करना बुरा नहीं, पर तपस्या का अहंकार अभिमान होना बुरा है। इतना अभिमान हो गया कि जो है दीननाथ अपनी तपस्या का बखान करते रहा। भगवान शंकर ने सोचा बेचारा बहुत तपस्या किया और अहंकार होने के बाद पतन हो जाएगा, और हमने जो वरदान दिया मर्ता का विफल हो जाएगा, इसलिए इसको सावधान करना चाहिए। भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश बनाकर उस तपस्वी के पास आते हैं और बोलते हैं भिक्षा मह्यम देही, मुझे भिक्षा प्रदान करो। हाथ उठा के बोला कि आपको जो चाहिए सो मांग लो। बोले कि पहले तुम वचन दो, ऐसे हम नहीं मांगने वाले, हमने मांग लिया तुमने ना कर दिया तो हमारा वचन खाली जाएगा। इसलिए तुम तीन बार पहले संकल्प पढ़ो कि मैं अवश्य दूंगा। उन्होंने कहा कि तीन बार नहीं 13 बार संकल्प पढ़वा लो, मैं सबको देने में समर्थ। अभिमानी विचार नहीं करता है, बस संकल्प पढ़ लिया। पांचों ब्राह्मणों ने कहा कि देखो हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण को लोभ नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है। इसीलिए हम आपसे धन नहीं मांगेंगे, धन मांगने से अहंकार हो जाएगा, भोग ऐश्वर्य में पड़ जाएंगे, भिक्षा से हमारा काम चल जाता है। आप हमें अपने तपस्या का एक भाग दे दो। उसने कहा ले लो, हमने बहुत तपस्या किया, 1 वर्ष की तपस्या का भाग आपको देता हूं। पांचों ब्राह्मणों ने कहा कि हमें तो बस तपस्या का अंश ही चाहिए। वह घबराया, बोला पांचों को अंश दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, बहुत चिंतित हुआ। ब्राह्मणों ने कहा देखो हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, पहले हमारा नाम सुन लो। ये जो सबसे आगे है इनका नाम है आकाश देव, ये आकाश के हिमानी देवता है। दूसरे है मरुद देव, वायु का हिमानी देवता। और तीसरे जो ब्राह्मण है ये आपके अग्नि देव है, अग्नि के हिमानी देवता। और चौथे ब्राह्मण साक्षात वरुण देव, जल के हिमानी देवता है। और पांचवा जो मैं हूं पूषा देवी, ये हम पांचों ब्राह्मण बन के आपके पास आए हैं क्योंकि आपने बड़ी भारी तपस्या की है, आपके तपश्चर्या के महिमा को सुनकर आए तपस्या के भाग को मांगने के लिए। तपस्वी तो घबराया, उन्होंने तर्क दिया कि तुमने हमारे अंश से बैठ के तपस्या की। जल देवता ने कहा कि तुमने हमारे जल को पी के तपस्या किया। मरुद देव ने कहा कि तुमने हमारे हवा को ऑक्सीजन को लेकर तपस्या किया। आकाश ने कहा कि जहां तुम बैठे थे ना चारों तरफ हमारा ही अंश था, इसलिए हमारा मौलिक अधिकार है तपस्या में। अब तो तपस्वी और घबराया, अब तो देना ही पड़ेगा। उसे बात समझ में आ गई, चरणों में गिर पड़ा, बोला अपराध क्षमा करें, मुझे बात समझ में आ गई। तो जो तपस्या है, तपस्या करना अच्छी बात है, पर अहिमान हो जाता है तो आदमी अपने इष्ट का भी तिरस्कार कर देता है। परंतु यदि हम जीवन में परमात्मा को आश्रय देंगे तो फिर भगवान रक्षा करते हैं, भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। तो यहां पर कह दिया कि न तच्चित्रम तस्मिन वरी वशीतरी त्वच्चरणयो, आपके चरणों की उपासना करने वाले सब कुछ प्राप्त कर लेते, यहां तक कि मौत को भी जीत लेते हैं। कलयुग में मार्कंडेय ऋषि हुए, मृकंडु के पुत्र। उनकी आयु केवल 8 वर्ष की थी। उनके पिता ने बता दिया कि बेटा तेरी आयु केवल 8 वर्ष की है। जब मृत्यु का समय आया केवल 3 दिन बाकी रहे, पिता ये बहुत उदास हो गए। मार्कंडेय ने पूछा कि आप इतना उदास क्यों हैं? पिता ने सारी बात बता दी। मार्कंडेय जी महामृत्युंजय का मंत्र जपते हुए भगवान शिव की शरणागत हो गए। बोले कि आप सबको देने में समर्थ है, आपने आयु यदि आपने जन्म दिया है तो आप हमको अमर ही बना सकते हैं। समय अनुसार यमराज आए। जैसे यमराज आकर के अपना यमपाश फेंकते हैं, तत्काल भगवान शंकर का विभाव हो जाता है। भगवान शंकर ने यमराज से कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो महामृत्युंजय का जप करता है उसको तुम यमपाश से बांध नहीं सकते। यमराज चरणों में गिर गए। बोले कि महाराज नियम भी तो आपने ही बनाया है ना, आपने ही आयु दी, आपने ही 8 वर्ष की आयु का विधान किया और आपने